जब कभी हम नाकाम हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी से मायूस ही नहीं बल्कि खुद को कमजोर समझते हैं। ये गीत यशया बाब 40 आयत 28 से 31 पर आधारित है। कुव्वत व सब्र, हिम्मत देगा तुम्हें वही, गर है भरोसा उस पे हो लाख मायूसी।

0: आज का वादा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद 32। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्यारे लोगों, हम सच्चाई कैसे जान सकते हैं? हमें प्रतिदिन शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना है। पढ़ें और प्रभु के वचन पर मनन करें। हम यीशु मसीह को तब जान सकते हैं जब हम प्रतिदिन सत्य पर मनन करते हैं। सच्चाई जान सकते हैं अगर हमारे दिलों में सच्चाई है, तो परमेश्वर भी शास्त्र के माध्यम से हमसे बात करेंगे। जब हम शास्त्र को अपने मन में लाएंगे और उसका ध्यान करेंगे, चाहे कितनी भी बीमारियां और कमजोरियां हों, ये ठीक हो जाएगा। हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर हमें किसी भी कठिनाई से मुक्ति देगा। वह हमसे पवित्र शास्त्र के द्वारा बातें करेगा। ये वे सत्य है जो यीशु ने कहा था कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें हर दिन सच्चाई जानने की जरूरत है। आपको बाइबल पढ़ने और प्रभु को जानने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम प्रतिदिन इस पद का ध्यान करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में सबसे महान कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, एक पत्रस अध्याय 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ प्यारे लोगों, नवजात शिशु कैसा दिखता है? जब भी भूख लगती है, वह दूध पीती है। इसी तरह हमें शास्त्रों के ज्ञान के लिए तरसना चाहिए। जैसे नवजात शिशु भूखा होता है, वैसे ही हमें शास्त्र के लिए तरसना चाहिए। शास्त्रों को प्रतिदिन मजे से पढ़ना चाहिए। यदि हमारा जीवन पवित्र शास्त्र से भरा हुआ है, तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हमें शास्त्र पर प्यास चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु ने हमें जो कहा है उसकी सच्चाई जानने का सौभाग्य प्रदान करें। सभी को परमेश्वर के वचन के लिए तरसने वाले लोगों में बदल दें। आप जो प्यार करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा और स्तुति देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: मैथ्यू अध्याय 5:13 का सुसमाचार।
0: तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक नमकीन हो। नमक पानी में कैसे घुलता है, उसी प्रकार हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हम नमक बनना चाहते हैं। हम नमक का और क्या उपयोग करते हैं? नमक स्वाद देगा। क्या बिना नमक के खाना संभव है? नहीं खा सकते हैं। नमक खाने को खराब होने से बचाता है। नमक अचार को खराब होने से बचाता है। उसी तरह हमें किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें खराब होने का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत है। केवल स्वाद के लिए नमक। हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नमक का और किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है? औषधि के रूप में भी कार्य करता है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। दूसरों को ठेस न पहुंचाएं। हमें यथासंभव मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। सोचिए हमारा जीवन कैसा है। क्या हम नमकीन हैं? या हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मुझे नमक में बदल दे। हमें प्रभु के लिए उपयोगी होना चाहिए। हाँ प्रियो, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9:49, क्योंकि हर एक जनवरी आग से नमकीन किया जाएगा। हाँ प्यारे लोगों, यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल एक या भी सुलग जाती। अगर परमेश्वर की आग हम में आती है, तो हम नमक बन जाएंगे। हम दुनिया के लिए नमकीन होंगे। हम लोगों के लिए उपयोगी होंगे। हमें हर दिन प्रभु के योग्य जीवन जीना चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के ज्वलंत अभिषेक को सुनने और प्राप्त करने के लिए, हे यहोवा, मुझ पर आग लगा दे। तुमने कहा था कि तुम धरती पर आग लगाने आए हो। प्रभु से विनती कर अपनी आग मुझ पर भेज। प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। वह तुम्हें नमक की तरह इस्तेमाल करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो तेरा जीवित वचन सुनता है, वो तेरी आग उन पर बरसाए। सराप आए तो हम दुनिया के लिए नमक बन सकते हैं। प्रत्येक आत्मा पर अग्नि का अभिषेक अवश्य भरना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक से भरा होना चाहिए। आप इसे करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम आपको महिमा और सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: यशाया
0: प्यारे पिता
1: 12:2
0: की पुस्तक, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हाँ प्यारे लोगों, प्रभु हमारी ताकत है। आप सोच सकते हैं कि मुझ में कोई ताकत नहीं है। क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? मैं बहुत थका हुआ और कमजोर हूँ। प्रभु हमारी ताकत है। डेविड ने कहा, हे यहोवा, तू मेरा बल है और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। हमें उससे प्यार करना चाहिए। वह हमारी ताकत है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। हमें उससे कहना चाहिए, यीशु, तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी शरण हो, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। अगर हम उनके चरणों पर टिके रहे तो वे हमारे लिए ताकत बनेंगे। इतना ही नहीं, यशाया 25:4 कहता है कि क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़। क्या तुमने ध्यान दिया? मेरे पास कोई नहीं है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या करना है? परमेश्वर गरीबों के लिए शक्ति है। वह न केवल अमीरों को बल्कि अमीर और गरीब को भी ताकत देता है। चिंता मत करो। हाँ प्रियो, जब भी मेरे जीवन में कमजोरी होती है, प्रभु ने मुझे मेरी कमजोरी से मुक्ति दिलाई है। वह आपके जीवन में आने वाली कमजोरी से भी आपकी रक्षा करेगा। आपको उस पर पूरा भरोसा करना होगा। उस पर विश्वास करो और जो निश्चय ही वो आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता, जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारी ताकत हैं। उन सबों को दृढ़ करो जो पछताते हैं कि मैं इस समय बलवंत नहीं हूँ, कि मैं रोगी हूँ और खाने की शक्ति नहीं रखता। टाइफाइड और कैंसर के बारे में चिंता करने वालों के लिए चंगा करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बच जाएंगे। आपने कहा था कि ये गरीबों की ताकत है। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। 1,000,000 धन्यवाद। हम क्या करते हैं कि आपको रोने वालों की रक्षा और रख रखाव करना है। प्यारे पापा, हमें उनकी सभी कमजोरियों को बदलने और उन्हें नया जीवन देने की जरूरत है। सभी जरूरतों को पूरा करें और सभी के आंसू पोंछें और उनका हाथ पकड़कर नेतृत्व करें। हम आपको महिमा और सारी महिमा लाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: प्यारे पिताजी,
0: हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मुसीबत में एक बहुत ही वर्तमान मदद। क्या आप चिंतित हैं कि इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है? चिंता मत करो, मुझे दिलासा देने वाला भी कोई नहीं। क्या आप इससे चिंतित हैं? चिंता मत करो, संकट के समय यहोवा हमारा सहायक है। वह किसी भी स्थिति में हमारा साथी होगा। चिंता मत करो, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्या करना है? हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनका सहायक और ढाल होगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वे आपका सहायक और ढाल होगा। हमें हर दिन उस पर भरोसा करना चाहिए। निश्चय ही वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। वह अच्छाई लाएगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। आज से प्रभु पर भरोसा रखें। नए दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु में विश्वास करें ये कहते हुए कि मैं अब प्रभु पर भरोसा रखूंगा। वह आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आपका साथी और ढाल बनने से आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हे हमारे प्रेमय धन के परमेश्वर, कितने लोग आंसू बहा रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है। संकट की घड़ी में उन्हें एक अनुकूल साथी बनने से बचाएं। उन्हें आप पर भरोसा करने की महान शक्ति दें। उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। हर दिन उनका हाथ पकड़ें, उनके दुखों से उनकी रक्षा करें और अनेक क्लेशों की इस घड़ी में उनकी रक्षा करें। हम आपके लिए सभी महिमा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: यूहन्ना अध्याय 14:27
0: की पुस्तक। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि परेशान और डरो मत। इस दुनिया में जो भी समस्या आएगी, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए परेशान और डरो मत। प्रभु यीशु मसीह की यही वाणी है, मैं सब विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। यशाया की पुस्तक अध्याय 49:16। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपनी हथेलियों में खींचा है। उसके हाथों को पीटा और कुचला गया था। उस हाथ में वह हम सभी को गढ़ा गया है। यदि आप अपनी हथेली में पैसा रखते हैं, तो क्या आप इसे नीचे रखेंगे? हम अपनी हथेली में जो कुछ भी रखते हैं, उसे नीचे नहीं छोड़ेंगे। हम इसे कितना सुरक्षित रखेंगे? मनुष्य इस हद तक रक्षा करता है कि हम का रचिता हमें अपनी हथेली में कितना रखता है और हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें सहारा देता है और अपने प्रेम से हमें गर्म करता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सबको सुख और शांति दो। सभी को आशीर्वाद दें, रक्षा करें और ऊपर उठाएं। आपका आशीर्वाद उन्हें घेरे रहे। उनकी जो भी कमजोरी है, उसे ठीक करना। किसी भी बीमारी को ठीक करता है। प्रिय प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें पूरी तरह से चंगा करो और अपने नाम की महिमा करो। मैं आपको सभी प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना को यीशु के नाम से अध्याय 28:25
1: आमीन।
0: और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे, आप मेरे भगवान पर भरोसा करते हैं। वह आपको आपके जीवन में समृद्धि, आपके व्यवसाय में समृद्धि देगा। वह आपकी सभी समस्याओं को बदल देगा और आपके परिवार को समृद्ध बनाएगा। प्रभु के सेवकों, वह आपको आपकी सुसमाचारीय सेवकाई में समृद्धि देगा। आप जहां भी जाते हैं, आप आत्माओं को जीत सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आप समृद्ध होंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। क्या आपको हमारे प्रभु पर भरोसा है? तब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस पर भरोसा करो, उस पर पूरा भरोसा करो। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 32:10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वे करुणा से घिरा रहेगा। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो अनुग्रह निश्चित रूप से आपको घेर लेगा। इसलिए बिना अंतराल के प्रभु पर भरोसा रखें। हमें सिर्फ एक दिन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब हमें आशीर्वाद मिलता है और जब हम समस्याओं में होते हैं, तो हमें छोड़कर परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 62:8, है लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। जो भी आए, हमें ये कहना चाहिए कि यीशु तुम मेरा भरोसा हो। प्रभु हम सबका सब कुछ है, इसलिए उस पर पूरा भरोसा करें। वह आपको बिना सीमा के सुख शांति देने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम आभारी हृदय से आपकी स्तुति करते हैं। पिता, जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें धैर्य होने में मदद करें। उन्हें आप पर भरोसा करने की शक्ति दें। उन्हें आपके बारे में और अधिक जानने दें। भगवान, जिन बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है, उनकी जल्द से जल्द शादी करने में मदद करें। जो लोग व्यापार, आपको उद्यमी के परिवार को आशीर्वाद देना है। कृपया सभी पारिवारिक समस्याओं और चिंताओं और झगड़ों को बदल दें। उन्हें जीवन में आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए। उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने दें और आपकी कृपा से उनकी आत्मा को दिन प्रतिदिन ईश्वर में बढ़ने दें। चिंता करने वालों के द्वारा किसी भी आत्मा को प्रभु के पास नहीं लाया जा सकता है। आत्माओं को अपने पास लाने के लिए ज्ञान दें पराक्रमी प्रभु। अपने लोगों का उपयोग करें और उन्हें आशीर्वाद दें। मैं नम्रता से उस पराक्रमी नाम यीशु हमारे प्रभु को

0: 10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। भले ही ये दुनिया हमें छोड़ दे, परमेश्वर हमें अपने साथ रखेगा। हमारे पिता ने मुझसे कभी बात नहीं की, हमारी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की। कितने लोग परवाह करते हैं कि हमारी माँ ने मुझे नोटिस नहीं किया और जहाँ पिताजी ने मुझे नोटिस नहीं किया। प्रभु को थामे रहो कि तुम अकेले ही काफी हो। वह हमें क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास माँ और पिताजी भी नहीं है। परमेश्वर ने मेरा इलाज किया। माँ और पिताजी को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। मैं जिंदा हूँ। परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। क्या आपको आपके बच्चों ने छोड़ दिया है? क्या आपको आपके माता पिता ने त्याग दिया है? क्या सभी ने आपको छोड़ दिया है? परेशान मत होइए, प्रभु हमारे साथ होंगे। परेशान मत होइए, वह आकाशों और पृथ्वी का रचयिता है। हाँ प्यारे लोगों, चिंता मत करो, आंसू पोंछो। चिंता मत करो, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे पास कोई माँ नहीं है और कोई पिता नहीं है और कोई आँखों की दृष्टि नहीं है, तो अभी परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। वह आपकी भी अगुवाई करेगा। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। परेशान मत होइए। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय पिता, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु की जय हो। मेरे बच्चों ने छोड़ दिया है, हमसे बात नहीं कर रहे। क्या आप उन लोगों को आशीर्वाद दें जो चिंतित हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है? आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे। आप सभी को अपना ख्याल रखना है। अविवाहित संतानों का विवाह अवश्य करना चाहिए। कर्ज की समस्या को बदलने की जरूरत है। लोगों की मदद करें और महान कार्य करें। हम आपकी महिमा करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता
0: 23 पद 1।
1: आमीन।
0: यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ मेरे प्यारे लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। यदि प्रभु हमारे जीवन में एक अच्छा चरवाहा होता तो हमें न भूख, न प्यास, न पीड़ा होती। इसलिए परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आपको और मुझे कहना होगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और हम सभी को उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार है। हमें अपने मन में सच में कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। इस दुनिया में हमें उनके जैसा अच्छा चरवाहा नहीं मिलेगा। केवल वही अच्छा चरवाहा है। हमें उसे अपनी स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों आप स्कूल और कॉलेज जाने लगे हैं। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। वह एक अच्छा चरवाहा है। यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा था। यीशु मसीह आपका अच्छा चरवाहा होगा, आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर के समान मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका से मार्गदर्शन करेंगे और आपको सब कुछ सिखाएंगे। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं तेरी स्तुति और करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं इस दिन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको स्वर्ग से ज्ञान और याद दो। हे प्रभु, उन्हें शिक्षा दो। परमेश्वर, आप जैसा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप बोलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर, उन्हें हर मिनट सिखाओ, उनका हाथ पकड़कर उनका मार्गदर्शन करें। इसी तरह मैं जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके चेहरे से आंसू पोंछ दें, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ।

0: आज का वादा इब्रानियों अध्याय 13 पद 6। इसलिए हम बेधक होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी बात से नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर हमारा साथी है, वह वही है जो हमारी मदद कर सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें काम करना चाहिए, प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह हमारा सहायक होगा। भजन संहिता 28 अध्याय 7 पद की पुस्तक कहती है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। हमारे दिल को पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना। कोई भी इंसान एक भ्रम है। यदि हम केवल प्रभु पर भरोसा करते हैं तो सहायता उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। मदद जरूर मिलेगी। क्या हम उससे प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, जो इन जीवित वचनों को सुनते हैं उन पर दया करो। बहुतों को समस्याएं और संघर्ष हैं। हे मेरे परमेश्वर, लोगों की समस्याओं और संघर्षों को बदलें। कई लोगों को तरह तरह की आपत्तियां हैं। विरोध के बीच यहोवा परमेश्वर को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। आपने कहा था कि जब शैतान बाढ़ की तरह इकट्ठा होगा तो पवित्र आत्मा उसके खिलाफ झंडा उठाएगा। आपके बच्चों के खिलाफ बहुत सारे जादू और जादू मंत्र हैं। सभी बुराइयों और समस्याओं से हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे जीवित रहें और सुरक्षित रहें। सबका ख्याल रखना, परमेश्वर की कृपा उन्हें घेर ले। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना को यीशु के नाम से पूछता हूं। पदार्थ की पुस्तक, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हाँ प्रियो, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी चाहिए। हमें उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में ऊपर उठना है तो हमें प्रतिदिन प्रभु की महिमा करनी चाहिए और उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। उसकी प्रशंसा करो। प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन को ऊंचा करेगा, क्योंकि वे हर दिन अपने नाम की महिमा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। परमेश्वर आपको इस हद तक आशीष देने में सक्षम है कि आप उसे ऊंचा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 20 पद 7 पद 8। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उठकर सीधे खड़े होंगे। आप कई लोगों के बीच कर्जदार हो सकते हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उसकी बड़ाई करके सीधे खड़े होंगे। यहोवा वह परमेश्वर है जो हमें खड़ा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। प्रभु ने आपकी कर्ज की समस्या को बदल दिया होगा। चाहे आपने कहीं भी संघर्ष किया हो और चाहे आप कहीं भी झुके हों, उसी स्थान पर भगवान निश्चित रूप से आपको ऊपर उठाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चे दर्द में हैं और आंसू बहा रहे हैं पिता, उनमें से प्रत्येक के आंसू पोंछना चाहिए, उनकी चिंताओं को बदलना चाहिए, आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए, उनके दिलों में शांति दें। सभी परिवार शांति से हो, आपका हाथ उनकी रक्षा करे। आप जिस अनुग्रह के लिए ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी महिमा और सारा सम्मान देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज का वादा के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय 7 पद 23। आमीन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हाँ प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग मानव परामर्श के आदि हैं। वे प्रभु के वचनों को नहीं सुनते, वे मानवीय शब्दों और आदेशों के गुलाम हो जाते हैं। मानव प्रेम की लालसा में वे इसमें पड़ जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ उन्हें प्रसन्न करते हुए मानव के गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग कर्ज में डूब जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग ऋणदाता के आदि हो जाते हैं। कभी किसी इंसान का गुलाम मत बनो। भगवान जो कहते हैं उसका पालन करें। अपनी आत्मा को मत खोना। अभी भी अन्य लोग बैंक के कर्जदारों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करके बंधन में बंधे हैं। आइए हम ऐसी गुलामी में न फंसे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। इसलिए किसी भी आदमी के गुलाम मत बनो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें। सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ परमेश्वर। और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारी कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।
1: प्रेरित पत्रस लेता है 2 पत्रस पुस्तक अध्याय 1 पद 19। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। अंधेरे में केवल प्रभु का शास्त्र ही चमकता है। हमें उस शास्त्र को देखने की जरूरत है। प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करें और मनन करें। दिल में अंकित हो जाना, तदनुसार किया जाना है। तब परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसी कारण भजनहार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119 पद 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके अलावा भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119 पद 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अहमियत दो। इसलिए पत्रस लिखता है 1 पत्रस पुस्तक अध्याय 2 पद 2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु के शास्त्रों को अपने भीतर रखने से न केवल हमें अंधेरे में प्रकाश मिलता है, बल्कि हमारे रास्ते फिसलने से भी बचते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 37 पद 31, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें। उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें। उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। एक साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ।
0: आमीन। पुस्तक, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है।
1: वह सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तुम्हारा ऋण अवश्य चुकाएगा। परमेश्वर आपकी चिंता बदल देगा, आपकी समस्या को दूर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को अच्छी बुद्धि देगा, प्रभु ज्ञान देंगे, वे अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। किसी बात की चिंता मत करो। आपको क्या लगता है कि पैसा कैसे चुका सकता है? भगवान सब कुछ करेगा। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वह जो भी फैसला करेगा उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वह जो सोच रहा है उसे बाधित किए बिना वे निश्चित रूप से आपका जीवन करेगा। प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। योएल की पुस्तक अध्याय 2:21। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा क्यों कहता है मत डरो और आनंद करो? हम सोचते हैं और हमारी आत्मा में बहुत भ्रम पैदा करते हैं। पूरा शरीर कमजोर हो जाता है तो वह हमें दिलासा देता है। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ संभाल लेंगे। परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा। हमें आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके आभारी हैं। आपको उन लोगों का कर्ज चुकाना होगा जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। बीमार लोगों को चंगा करना चाहिए, कमजोरों को अच्छी रिहाई दें। अपने नाम की महिमा करो। हम यीशु की स्तुति करते हैं। जो लोग शैतान की शक्ति में फंस गए हैं और भय और पीड़ा से पीड़ित हैं, उन्हें अच्छा उद्धार दें। समस्याओं और चिंताओं को दूर करें, भगवान की कृपा उन्हें घेर ले। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आप सभी की जय हो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को यीशु के नाम अध्याय 4:4 आमीन। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जादू से प्रभावित हुए हैं? इसे देखने से डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह महान है। वह आपकी समस्या से बड़ा है। कोई समस्या कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर जो हम में है वह महान है। चिंता मत करो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21 की पुस्तक कहती है, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। हमारे पास जो विरोध आ रहा है उसे देखकर डरो मत, परेशान मत हो, क्योंकि यहोवा महान है। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने लोग परेशान हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक समस्या है, मुझे बहुत समस्या है। मेरे पास ब्याज ऋण है और लोग चिंतित हैं कि मैं इस ब्याज ऋण का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। ऑफिस में किसी तरह की परेशानी होने से कुछ लोग परेशान हैं। हर आंसू पोंछो और सभी समस्याओं को बदलो और हर लोगों को आराम और खुशी दो। प्रभु आपको महान कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन बच्चों को स्मृति अवश्य दे जो चिंतित हैं कि परीक्षा आ रही है। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि देनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आपको बड़ा काम करना चाहिए। प्रेम के परमेश्वर सभी को आराम, शांति और खुशी दे और उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। और हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: भजन संहिता अध्याय 84 पद 12 की पुस्तक। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्यारे लोगों, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम किस पर निर्भर हैं? क्या हमने आत्मनिर्भरता पर भरोसा किया है? क्या हम दोस्तों पर भरोसा करते हैं? क्या हम पैसे और प्रसिद्धि पर भरोसा करते हैं? इसके बारे में सोचो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप धन्य होंगे। कोई कमी नहीं है। कैसी भी समस्या हो, प्रभु हमें नहीं छोड़ते। यहोवा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सब बातों में विजय दिलाएगा। उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। हाँ प्यारे लोगों, चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 62 पद 8। है लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। अच्छाई, बुराई और कठिनाई आने पर हमें यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से आपके आंसू पोंछता है। अच्छा और बुरा आने पर कृतज्ञता पूर्वक उसकी स्तुति करें। हमें वैसे भी उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ प्यारे लोगों, तब यीशु मसीह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। वह आपको मुक्त कर सकता है और आपको बचा सकता है। क्या आप हमेशा उस पर भरोसा करते हैं? हाँ प्यारे लोगों, हर मिनट उस पर भरोसा करना चाहिए। जब आप इन हिंसक रोगों से पीड़ित होंगे तो वे निश्चित रूप से आपके आंसू पोंछेंगे। वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। वह आपकी बीमारी का इलाज करेगा। क्रेडिट मुद्दे को बदलता है। वह आपको शांति और खुशी देगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता की सराहना करते हैं। धन्यवाद यीशु। अपने बच्चों को आप पर पूरा विश्वास करने में मदद करें। उन्हें आप पर भरोसा करने का अनुग्रह दें। हर समय, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में और विपत्ति में आप पर भरोसा करने में उनकी मदद करें। हर जीवन में उनका आश्रय, साथी और गढ़ बनो। हम कमजोर बहनों और भाइयों को ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भगवान, आप ही उनकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। अध्याय की पद 17। आमीन। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर हमें मुक्त कर सकता है। मेरे पास इतनी कठिनाइयां हैं, मुझे कौन छुड़ाएगा? इसलिए तुम आंसू बहाओगे। अपने आंसू पोंछ लो। निश्चय हमारा परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से बचाएगा। तो थको मत। बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91 पद 3। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस दुनिया में कीट बढ़ रहे हैं, परेशान मत होइए। तो बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91 पद 6। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अथक प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय ही हमें बचाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मेरा धन्यवाद। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दें। परमेश्वर, उन्हें आराम और अच्छाई दो। दया गुल होनी चाहिए। उन्हें मौन से भर दो। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी होगी। हर तरफ जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना, ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। आपको हमें इन सभी रोगों से मुक्त करना होगा। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कार्य करो और अपने नाम की महिमा करो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।

0: a product from Jinnah Kumbhambhadat Music Factory.
1: है इसराइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। हाँ प्यारे लोगों, इसराइल के स्थान पर अपना नाम रखना। जब हम परमेश्वर के स्थान पर लौटेंगे तब परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देगा। जब हम उसके पास लौटेंगे तो वे हमें अवश्य आशीष देगा, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसराइल के स्थान पर अपना नाम लिखो और आगे पढ़ो। जब तू यहोवा की ओर फिरेगा और जब तू परमेश्वर की ओर फिरेगा तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यहेजकेल अध्याय 18 पद 32 की पुस्तक। जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दो। अब तक हम दुनिया की तरफ मुड़ते रहे हैं और जी रहे हैं, अब प्रभु की ओर मुड़ें। प्रभु आपको अवश्य आशीष देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। यहोवा आपको आशीष देगा और ऊंचा करेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? हम अपने स्वर्गीय पवित्र पिता के प्रति कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद यीशु, हर जीवन में बड़ा काम करो। उन सभी के जीवन और आत्माओं में चमत्कार करें जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं। उठाना चाहिए, क्या आप उन लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि हम इस दुनिया में कैसे जीवित रहेंगे, हम अपने पारिवारिक जीवन का नेतृत्व कैसे करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं? आपको उन लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए जो इसकी चिंता करते हैं। तूने कहा है कि यहोवा की ओर फिरो और तू जीवित रहेगा। पिताजी को उन्हें वे अनुग्रह देना चाहिए जो उन्हें आपके पास लौटने के लिए चाहिए। उनके आंसू पोंछो और चंगा करो और आशीर्वाद दो। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
2: यशायाह अध्याय 52 पद 12।
1: आमीन।
2: क्योंकि यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और इसराइल का परमेश्वर तेरा प्रतिफल होगा।
1: हाँ प्रियो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं यहोवा आपके आगे आगे चलता है। तुम चिंता मत करो, शायद साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, यहोवा तेरे आगे आगे चलकर बड़े बड़े काम करेगा।
2: यशाया अध्याय 45 पद 2 की पुस्तक कहती है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा।
1: हाँ प्रियो, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और कुटिलों को सीधा करेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और भगवान आपके जीवन में महान कार्य करते हैं तो वे आपकी सभी बाधाओं, कठिनाइयों, आंसुओं और दर्द को बदल देगा। कभी चिंता मत करो, बेशक आपको काम मिल जाए। क्या आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं? प्रभु आपके आगे आगे चलेंगे और आपको परीक्षा में सफल होने की बुद्धि देंगे। चिंता मत करो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो और चले जाओ, वह महान कार्य करेगा। क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। हम आपके आभारी हैं। जो लोग काम पर जाते हैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता दें। आपके नाम की महिमा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस लिए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा रखें, सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। आप सभी की जय हो। हम यीशु मसीह अच्छे पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं।
2: व्यवस्था विवरण पुस्तक
1: अध्याय 30 श्लोक 5। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तुम्हें गुणा करना परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो क्या करें? इब्रानियों अध्याय 6:14-15 कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्या हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में समृद्ध और गुणा करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हमें उसके द्वारा किए गए वादे के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
2: सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। लंबे समय तक प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए गाना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और परमेश्वर को जानना चाहिए। तब परमेश्वर निश्चय तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुणा करेगा। उसने आशीर्वाद और गुणा करने का वादा किया है। हमें अपने जीवन में वादा पूरा होने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उसके भजन गाना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन में हमें गुणा करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जीवित वचन को सुनने वाले सभी के जीवन में बहुतायत दे, उन्हें हर चीज में गुणा करने दे, आशीर्वाद और लाभ प्रचुर मात्रा में हो। हम आपको पूरा सम्मान और गौरव देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। दो कुरियारी पांचवा अध्याय श्लोक 17। आमीन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई होगी। हाँ प्रियो, यदि हम मसीह में हैं तो हम नए हो जाते हैं। जब हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमेशा उनकी स्तुति करते हैं तो हम एक नई सृष्टि में बदल जाते हैं। सब कुछ नया है, सब पुराना लुप्त हो रहा है। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारी पुरानी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। प्रभु सभी चीजों का नवीनीकरण करता है, तो चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह आपको नवीकृत करना चाहते हैं। पुराना स्वभाव मेरा साथ नहीं छोड़ रहा, मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। आपको क्या लगता है कि ये कैसे बदलेगा? जबरदस्ती आपकी पुरानी चीजें जरूर गायब हो जाएंगी। निश्चय ही यहोवा उसका स्थान लेगा। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय श्लोक 5। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ प्रियो, केवल पवित्र आत्मा ही हमें फिर से नया सृजन देगा। चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के साथ आपको फिर से नया सृजन करेंगे। प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। यहोवा निश्चय ही तुम्हें पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को पूरी तरह से अभिषेक से भर देगा। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। पुराने पाप से छुटकारा नहीं मिल सका। अपने बच्चों को जो चिंतित हैं कि मेरा पुराना स्वभाव मुझ में है, उनके पुराने स्वभाव को जीवन में नए में बदल दें और आनंद दें। प्रभु को उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। उनमें से प्रत्येक को आशीर्वाद और ऊंचा करें। प्रभु का हाथ उन्हें संभालेगा। इस दिन यात्रा करने वाले लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हम आपको सभी सम्मान और धन्यवाद और महिमा देते हैं। हमारे अच्छे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय 13:6। आमीन। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर हमारा सहायक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको किसी से धमकी भरा पत्र मिलता है या आप मुसीबत में हैं? उसने मुझ पर मुकदमा किया, उसने मुझ पर मुकदमा किया, क्या आपको इसकी परवाह है? परमेश्वर हमारा सहायक है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 21। उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो परमेश्वर हमारे भीतर है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो घबराए नहीं। अगर आपके खिलाफ कई लोग उठ खड़े हों तो चिंता न करें। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। कोई भी समस्या आपको नष्ट नहीं करेगी। उससे प्रार्थना करो, वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। निश्चय ही यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, 1000 धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु, इस शो को देखने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनका उत्थान करें, उनके जीवन में महान कार्य करें और महान कार्य करें। मैं आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। बहुत से लोग पैसे की समस्या से पीड़ित हैं। उनकी पैसे की समस्या को बदलना चाहिए परमेश्वर। सोना चांदी तुमने कहा था कि सब कुछ तुम्हारा है। तुमने कहा था कि तुम उन्हें चांदी और सोने से समृद्ध करोगे, उनके जीवन में बड़े चमत्कार करें और अपने नाम की महिमा करें। उनके आंसू बदलो, उनकी चिंताओं को बदलें। वे इस दिन से आगे आपका आशीर्वाद, शक्ति और अनुग्रह देखें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आप उसके जीवन में सब कुछ करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं आपको 1000 धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें सारी महिमा, महिमा और अनुग्रह देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। यशायाह
1: की पुस्तक अध्याय 25 पद 9, हम इसी की बात जोहते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे, यहोवा यही है। हाँ प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। वह हमें पाप, शाप और आंसुओं से बचाएगा। मैं इस बात को नहीं छोड़ सका। मुझे लगता है कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप चिंता करते हैं कि मैं अनजाने में पाप करता हूँ? वह तुम्हें अवश्य बचाएगा। वही बचा सकता है। वह उद्धार करता है जिसके पास आपको पाप से बचाने की शक्ति है। वह कर सकता है। हतोत्साहित मत हो। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दो और प्रार्थना करो। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा, वह अवश्य बचाएगा। मैथ्यू अध्याय 1 श्लोक 21 का सुसमाचार, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को उनके पापों से बचा सकते हैं। तुम उसके पास आओ और देखो। इतना ही नहीं, लेकिन खुद को समर्पित कर दो। प्रभु आप हमारे उद्धार करता है। केवल तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। मुझे अपने पाप, श्राप और आंसुओं से मुक्ति चाहिए। हे प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन में महान कार्य करें। यदि हम आंसुओं के साथ पूछें कि प्रभु निश्चित रूप से उद्धार करेगा, क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु उन सभी को क्षमा प्रदान करें जो अपने आप पाप को न छोड़ने के कारण पीड़ित हैं। आप उद्धार देने वाले प्रभु हैं। हम बच्चों के उद्धार और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को सभी लोगों को सहन करने दो। सभी लोगों को अपनी महिमा से ढक दो। पिताजी हम आपसे विनती करते हैं, हर जीवन में बड़ा काम करो। आपको आशीर्वाद देना चाहिए। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
2: भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 23 पद 6, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हाँ प्यारे लोगों, इस दुनिया में हमारे पास कितने भी घर हों, यह स्थायी घर नहीं है। हम जहाँ कहीं भी हों, हमें हर दिन तैयार रहना चाहिए। जब तक हम दुनिया में हैं, हमेशा के लिए प्रभु के घर में रहने के लिए हर दिन प्रभु के साथ रहना। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम इस सांसारिक अशुद्ध जीवन से अचानक प्रभु के घर जाएंगे। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। उसे पूरी तरह जानना चाहते हैं। उसे पूरी तरह से जानने की प्यास और लालसा हमारे आत्मा में उमड़नी चाहिए, तभी हम हमेशा के लिए प्रभु के घर में रह सकते हैं। यहोवा का घर स्वर्ग है। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम वैसे भी इस दुनिया में रहेंगे और प्रभु के घर में रहेंगे। इफिसियों अध्याय 5 पद 16 की पुस्तक कहती है, और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ईसा मसीह जल्द ही आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, वह आकर हमें स्वर्ग में ले जाएगा। बुरे दिन हैं, हर तरफ कोरोना वायरस, हर तरफ डेंगू बुखार, हर तरफ स्वाइन फ्लू, हर तरफ बाढ़ और तबाही ही समस्या है। क्या हमने अपने दिनों में कभी ऐसी बीमारियों के बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं। हाँ प्यारे लोगों, ये दिन खराब हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि आप अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इन दिनों का उपयोग प्रभु के लिए करें। यीशु का आगमन निकट है, या हम नहीं जानते कि हमारी आत्माएं कब छीन ली जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हर पल प्रभु के करीब रहो। प्रार्थना करने, स्तुति करने और प्रभु की आराधना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और हमेशा अपने हृदय में प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु के आने पर हम उनसे मिल सकते हैं, अपने स्वर्ग में जा सकते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता। हर उस व्यक्ति को तैयार करें जो आपके वचनों को आपके आगमन के लिए सुन रहा है। आमोस अध्याय 4 पद 12 में कहा गया है कि प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृपया तैयारी करनी चाहिए। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। हम विनम्रता पूर्वक यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता
2: की पिता आमीन। अध्याय 28 पद 8। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर अभिषिक्त जनों का गढ़ और शरण स्थान है। जब वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ होगा तो हमें क्या खतरा होगा? कोई समस्या आ रही है? जो भी समस्या उत्पन्न हो उसे परमेश्वर बदल देगा। चिंता मत करो, वह तुम्हारा आश्रय है। हमें प्रतिदिन अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। यहोवा यूं कहता है, देख कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 पद 17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरीने स्वप्न देखेंगे। हाँ प्यारे लोगों, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर की यही वाणी है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल रहा है। यदि तेरा अभिषेक किया जाए तो वही तेरा गढ़ और शरण है। तुझे कोई कमी न होगी, कोई खतरा नहीं होगा, कोई जादू और जादू टोना आपको छू नहीं सकता। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुक्रिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक से भरा होना चाहिए। तूने कहा है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पवित्र अभिषेक उन सभी पर उंडेलेंगे जो आपसे इस समय ये अभिषेक लेने के लिए कह रहे हैं। प्रार्थना करने वाले सभी का अभिषेक करें। हर जीवन में चमत्कार चमत्कार और लाभ करें। सभी को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम आपको सारी महिमा और धन्यवाद देते हैं। हम अपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: रोमियों की
2: प्यारे पिता अध्याय 14 पद 4 क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ प्यारे लोगों, क्या मैं पाप में पड़ जाऊंगा? क्या मैं अंत तक खड़ा रहूंगा? ये उलझने आपके दिल में बढ़ सकती हैं। तो हम चिंता न करें। बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 1 इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। यीशु हमें स्थिर कर देगा, वह आपको पाप से बचाएगा। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा, भजन संहिता अध्याय 89:29-36 की पुस्तक, मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। यीशु हमें स्थिर कर देगा, वह ऐसा करने में सक्षम है। वहाँ आगे बाइबल कहती है, यहूदा अध्याय 1:24 की पुस्तक, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, इसलिए अपने दिलों में परेशान मत हो। यीशु आपकी रक्षा करने में सक्षम है। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। हे प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें उठाओ। प्रभु, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। अध्याय 1:3 की पुस्तक, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। शायद आपको लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ एक बाधा है, जो कुछ भी लिया है वह नुकसान है, किसी चीज में लाभ नहीं है, ये कठिन है। क्या आपको लगता है कि हर चीज में आंसू और दर्द होता है? दयो है वह मनुष्य जो प्रभु के वचन पर मनन करता है। हमें यहोवा के वचन से प्रेम करना है, दिन रात ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसे हैं, तो हम जो करेंगे वो सफल होगा। प्रतिदिन प्रभु के वचनों का पाठ करें, इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का ध्यान करें, तब तुम धैर्य हो जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करेंगे और निश्चित रूप से आपको शांति और खुशी देंगे। निश्चित रूप से यकीन है कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद और ऊंचा करेंगे। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को पूरी तरह से दूर करें। ऐसी कई चीजें हैं जो उन्हें वो करने से रोकती हैं जो वे करते हैं। सभी समस्याओं को बदलें। आपको हर चीज से छुटकारा चाहिए। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सब कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। गुड फादर, आमीन आमीन।

0: परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए।
1: जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया।

जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है।

आज का वादा भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 112 पद 4 सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी दयावंत और धर्मी होता है। हाँ प्रिय लोगों, अगर हम इस दुनिया में सही तरीके से जीते हैं तो प्रभु का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है भजन संहिता अध्याय 143 पद 10 की पुस्तक मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा के ओंकर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यदि पवित्र आत्मा हम में आता है तो वे हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। तो पवित्र प्राप्त करें। आत्मा पूरी तरह से प्रभु हमें भरने में सक्षम है। हमारी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 पद 17 और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह हाय, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंटमेंट ले। पवित्र आत्मा सही तरीके से अद्भुत रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा। डेविड कहते हैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 26 पद 12 मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, हमारे पैर कहाँ खड़े हैं? इसके बारे में सोचो। यदि हम सीधे हैं तो यहोवा का प्रकाश हम पर चमकेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कमजोर है वह मजबूत होगा। रोग से प्रभावित सभी लोगों का इलाज करें और उनकी कमजोरी को बदलें। पूर्ण सुख दे डंडा, आपकी स्वर्गीय अग्नि आपके लोगों को ढक दे। हम भजन संहिता 84 में पढ़ते हैं कि जो कोई तुम में रहता है वे हृदय है। हे पिता, हर एक को बलवान ढाल और सहायक होने से बचा ले। यदि कोई रोगी या पीड़ित है तो उसे स्पर्श करें और उसे पूरी तरह से चंगा करें और अपने नाम की महिमा करें। हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिताजी। आमीन आमीन।

0: युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हाँ प्रियो, घोड़ा युद्ध के दिन के विरुद्ध तैयार है। इस तरह हम वही करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। लेकिन जीत परमेश्वर की तरफ से होती है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, उसमें प्रभु को सफलता अवश्य देनी चाहिए। उच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं? केवल परमेश्वर ही आपको सफलता दे सकते हैं। उससे नियमित रूप से प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, बाइबल पढ़ें और विश्वास करें कि हमारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो पहले ईश्वर को खोजिए, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब भी तुम्हें दिया जाएगा, तभी वो आपको जीत दिलाएगा। अपने जीवन में हर चीज में परमेश्वर को पहले रखें, उसे अपने सामने रखें और परमेश्वर आपको ये सब देगा, वह सफलता लाएगा। आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। यदि आप व्यापार में असफल होते हैं तो भी परमेश्वर आपके परिवार में परेशानी, आंसू, चिंताएं बदल देंगे और परमेश्वर जरूर बदलेंगे। प्रार्थना करो और देखो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार और लाभ करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, वह तुम्हें विजय प्रदान करेगा। वह तुम्हें कर्ज से मुक्त करेगा और तुम्हें आंसुओं से मुक्त करेगा। केवल वही आपको मुक्त कर सकता है। आप पूर्व या पश्चिम से नहीं जीतेंगे। सफलता किसी जंगल से नहीं मिलती, विजय प्रभु की ओर से आती है। परमेश्वर की स्तुति करो जो हमें विजय प्रदान करता है। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत से लोग अपने पेशे के बारे में चिंता करते हैं। वे चिंतित हैं कि मेरा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। परमेश्वर उनके जीवन को आशीर्वाद दे और उन्हें जीवन में सफल बनाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो व्यापार के नुकसान से चिंतित हैं। उन्हें सफलता दे, उनके जीवन में अच्छे काम करें। चमत्कार और चमत्कार करो प्रभु। छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करें और बुद्धि और स्मृति देकर सभी परीक्षाओं को पास करें। उन पर दया करो प्रभु। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। हे परमेश्वर, उन्हें सब रोगों से चंगा कर और अपने नाम की महिमा कर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन।
1: थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। थिस्सलुनीकियों की पत्रियों में पौलुस अपना अधिकार नहीं जताता, वरन प्रेम पूर्ण मित्र भाव से लिखता है। यह इस पत्री की विशेषता है। पौलुस ने यह पत्री एक घनिष्ठ मित्र व आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में लिखी है। यह नए मसीहों को प्रोत्साहन देने एवं विश्वासियों को दृढ़ करने वाली पत्री है। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग दुख और कष्ट से जकड़े हुए थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अतः यह पत्री दुखी एवं कष्टप्रद लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनकी ऐसी दशा में परमेश्वर उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य धर्मावलंबी मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं करते, परंतु इस पत्री में मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में बताया गया है कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रोत्साहित करें। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन निश्चित है, अतः विश्वासी का आचरण मसीह के योग्य बना रहे और वह दूसरों को भी इसकी चेतावनी देते हुए उन्हें प्रोत्साहन देता रहे। इस पत्री में पौलुस ऐसे नए विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ एव अटल रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अनंत्य उनकी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रस्तुत है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुल अध्याय 5, अध्याय 1, कुल पद 10।
2: पौलुस और सिल्वानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की, जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 कुल पद 20। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 कुल पद 13। इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तिमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ

जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करें, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें।

पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 कुल पद 18। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चेताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।

0: अय्यो, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता
1: आज
0: रहे।
1: का वादा, पहला शमूएल अध्याय 12:16। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आँखों के सामने करने पर है। हाँ भाइयों और बहनों, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। अवश्य प्रतीक्षा करें और आश्चर्य में देखें, जरूर होगा। मैंने कई सालों तक प्रार्थना की, लेकिन थक मत जाना कि कुछ हुआ ही नहीं। हमें इंतजार करना चाहिए, निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। क्या आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं कि नौकरी नहीं मिल सकती? मेरे बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या आप इसके बारे में चिंतित हैं? चिंता मत करो, निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्य करेगा। आंसू मत बहाओ। निर्गमन अध्याय 14:13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। छुटकारे का अर्थ है महान मुक्ति, महान उद्धार परमेश्वर आपको देने जा रहा है। केवल तुम्हारे पापों से ही नहीं, तुम्हारी समस्याओं से भी, तुम्हारे आंसुओं से, अंतहीन समस्याओं से, चिंताओं से, निश्चित रूप से भगवान तुम्हें छुड़ाने वाले हैं। तो चिंता न करें, हम प्रभु की ओर देखेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, चिंता न करें, वह तुम्हें मोक्ष देगा। जो भी समस्या हो भगवान आपको मोक्ष देंगे। छुटकारे का अर्थ है महान मुक्ति। भगवान आपके आंसू पोछेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आते हैं। जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं उनके आंसू पोंछते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करते हैं, उनकी समस्याओं को बदलते। नौकरी न मिलने की चिंता करने वालों को अच्छी नौकरी दे। जो लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए आपको एक अच्छी शादी करनी चाहिए। आपको उन लोगों को पैसा देना चाहिए जिनके पास पैसे की समस्या है। कृपया उन लोगों की मदद करें जिन्हें दर्द, चिंता और दुख से शांति नहीं है, और आपके नाम की महिमा करें। आज तुमने कहा है कि अपने उद्धार की ओर देखो, निश्चय तू उनका उद्धार करेगा और अपने नाम की महिमा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। वे तुम्हारी बातें कहते हैं। इसके अनुसार उनकी सभी चिंताओं, समस्याओं को दूर करें और अपने नाम की महिमा करें। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना के लिए के नाम से पूछता हूँ। 31-14 और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर हम पर दृष्टि करके कहता है कि मेरी प्रजा उस भलाई से तृप्त होगी जो मैं उन्हें दूंगा। क्या आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं? क्या आप चिंतित हैं कि मेरे जीवन में एक भी अच्छाई नहीं है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी प्रजा उस भलाई से तृप्त होगी जो मैं दूंगा। निश्चय ही वो सर्वशक्तिमान है जो तुम्हें भलाई का मुकुट देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। लूका का सुसमाचार 1:53। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। हमें परमेश्वर में भूख और प्यास चाहिए। हमारा हृदय प्यासा और परमेश्वर का भूखा होना चाहिए। जब आप यीशु को प्यास से ढूंढते हैं, तो वे आपके जीवन की खामियों को बदल देगा और आपको पूर्ण भलाई से भर देगा। चिंता मत करो, यीशु आपका भला करने के लिए तैयार और उत्सुक है। क्या हम अपने प्रभु से पूछें, हे प्रभु हमें तुम में भूख और प्यास दो। मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसे खरीदने की, इसे अर्जित करने की इच्छा मेरे हृदय से दूर हो जानी चाहिए। तब परमेश्वर निश्चय तुझे भलाई से तृप्त करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। आपके बच्चे चिंतित हैं। तूने कहा है कि मेरी प्रजा भलाई से तृप्त होगी। इसी तरह अपने हर एक बच्चे को अपनी भलाई से भर दो। आपने कहा था कि मेरे द्वारा दिए गए लाभ से मेरे लोग संतुष्ट होंगे और वह वादा पूरा होगा। सभी को अच्छाई से संतुष्ट करें। प्रभु हमें आप पर भूख और प्यास दे। हम आखिरी मिनट में रहते हैं। ये अंतिम अवधि है। यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम दुनिया की भूख नहीं चाहते। हमें तुम पर भूखे प्यासे रहने का आशीर्वाद दो। आप जो दयालुता करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हम अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हैं। हम प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
2: वादा
1: अच्छा। प्रथम यूहन्ना 5:18 की पुस्तक। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ प्यारे लोगों, हम कैसे समझ सकते हैं कि हम भगवान से पैदा हुए हैं? बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:7 की पुस्तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो लोग परमेश्वर से पैदा हुए हैं उनके पास प्रेम पूर्ण मन और कर्म होगा। वे परमेश्वर और दूसरों से प्यार करेंगे। इसलिए जॉन कहते हैं 1 यूहन्ना 4:11 की पुस्तक। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्यार उनके लिए निशानी है जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें इस दुनिया में एक प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ईश ने कहा, पुस्तक यूहन्ना अध्याय 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए। प्रेरित यहूदा भी इसे इस प्रकार कहते हैं, पुस्तक यहूदा अध्याय 1:21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आभारी हृदय से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। कृपया फिर से नया जन्म लेने में मदद करें। हे परमेश्वर, हर उसको आशीष दे जो तेरी सुनता है, उनके आंसू पोछें और उनकी परेशानियों को बदलें और उनकी सभी समस्याओं को दूर करें। मेरे प्यारे पिता, उन लोगों को ठीक करो जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर, उन लोगों को चंगा करो जो किसी भी कमजोरी से पीड़ित हैं प्रभु, सभी मंत्रों को कुचल दे, उनके जीवन में चमत्कार होने दे, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें प्रभु उठो, हमें फिर से जन्म लेने में मदद करें। आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिताजी, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। अध्याय 28:20, आमीन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यदि हम विश्वास योग्य हैं तो हम बहुतायत से आशीषित होंगे। हमें अपने जीवन के प्रति सच्चे होना चाहिए। क्या हमें प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए? पिता, मेरे जीवन में विश्वास योग्य रहने के लिए मुझे वफादार बनाओ। भजन संहिता 51:06, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हर दिन हमें भगवान से पूछना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में वफादार रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन के प्रति सच्चे हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। आपको अपने कार्यस्थल, अध्ययन क्षेत्र और अपने परिवार में विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको बच्चों की देखभाल करने में विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको परमेश्वर को खोजने में विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें चर्च के मामलों में विश्वास योग्य होना चाहिए और हर चीज में सच्चा होना चाहिए। हम रोज भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान कृपया मुझे विश्वास योग्य व्यक्ति बना दे, मैं एक वफादार व्यक्ति की तरह जीने के लिए उत्सुक हूँ। सत्य को मेरे हृदय में धारण करो प्रभु। यदि हम परमेश्वर से मांगे तो वे हमें विश्वास योग्य व्यक्ति बना देगा। क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता को धन्यवाद। आपको उन लोगों के दिलों को आशीर्वाद देना चाहिए जो ये खबर सुनते हैं। प्रभु उन्हें विश्वास योग्य बनाए और उनके जीवन को आशीर्वाद दें कि कितने लोग अपने कर्ज से पीड़ित हैं। परमेश्वर, कर्ज की समस्या को बदलो। हे प्रभु, उनका कर्ज वापस करने में उनकी मदद करें। हे प्रभु, तूने तो केवल इतना ही कहा है कि हे प्रभु, हम उन्हें ढेर सारी आशीषें देंगे। फिर भी जो सब कर्जदार हैं, उन्हें भुगतान करने में मदद करें। हे भगवान, उनके आंसू पोंछो परमेश्वर। हे प्रभु, उनके लिए जो चिंतित हैं कि उनके परिवार में कोई समस्या है, उनके जीवन में चिंताओं को बदलो, आंसू पोंछो और सभी दुखों को बदल दो। कई माता पिता मेरे बच्चों में पढ़ाई की कमी को लेकर चिंतित हैं। परमेश्वर बच्चों को सद्बुद्धि और याद दे। कृपया सब पर दया करें। हे परमेश्वर, सभी को मजबूत करो, बड़े काम करो। धन्यवाद परमेश्वर, तुम वही करने जा रहे हो जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। 42, आमीन। तो मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ मेरे प्यारे लोग, वह मेरा कर्ज दे सकता है, वह हमारी दुखों को बदल सकता है, वह आपकी समस्याओं को बदल सकता है। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? चिंता मत करो, हमारे भगवान आपके बच्चों को ज्ञान और स्मृति शक्ति देंगे, वे अध्ययन करेंगे। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि स्कूल की फीस कैसे चुकाएं? चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई योजना असंभव नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने आपके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है, बिना किसी बाधा के वह आपके लिए ये करेगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। तो चिंता मत करो, निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा। योएल अध्याय 2:21 की पुस्तक है, देश तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरी भूमि से डरो मत और आनंदित रहो, यहोवा की यही वाणी है। हम सोचेंगे और भ्रमित हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन सांत्वना देने वाला है और ये आपको शांति देगा। है देश तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। डंडा, तुम खुशी से कहोगे कि मेरा प्रभु मेरी देखभाल करेगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा, ये हमारी आँखों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्या आप चिंतित हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते? चिंता मत करो, परमेश्वर बड़े चमत्कारी कार्य करेगा। अपने आंसू पोंछ लो, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, उन लोगों का कर्ज चुकाओ जो कर्ज में हैं। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें ठीक करें। जो लोग कमजोर हैं उन्हें मजबूत करें और आपके नाम पिता की महिमा करें। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। वे लोग जो बुरी आत्मा और भय से पीड़ित हैं, उन्हें उनके सभी संघर्षों और समस्याओं से मुक्ति देना। परमेश्वर, आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे यहोवा, तेरा पराक्रमी अनुग्रह उन्हें घेर ले। जो कुछ हमने प्रार्थना में कहा है वह तुम करने जा रहे हो, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं आपको यीशु की स्तुति, हम अपने प्यारे उद्धार करता यीशु मसीह आज का वादा के नाम से
2: भजन संहिता अध्याय 107:20 वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ प्रिय लोगों, क्या डॉक्टरों ने हार मान ली कि बीमारी दूर नहीं होगी? आपको कब लगता है कि ये सही होगा? प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा करने और विनाश से बचाने के लिए अपना वचन भेजा है। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर चंग भेजता है और चंगा करता है। केवल वही आपको ठीक कर सकता है। अपनी कमजोरी चाहे जो भी हो, अपने आंसू पोंछो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह को देखो, निश्चय ही वो तुम्हें चंगा करने में समर्थ है और तुम्हें विनाश से बचाएगा। वह निश्चय ही तुम्हें विनाश से बचाएगा। परेशान मत होइए, अपने आंसू पोंछ लो। शायद डॉक्टर ने हार मान ली। आपको कैसे लगता है कि ये सही है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, वह निश्चय ही तुम्हें चंगा करेगा और आशीष देगा। वह आपको दिव्य आनंद देगा। आंसू पोंछ लो। जॉन अध्याय 6 का सुसमाचार, श्लोक 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जब परमेश्वर का वो वचन आपके पास आएगा तो आपकी आत्मा बहुत पुनर्जीवित हो जाएगी। उनके श्लोक कैसे हैं? ये जीवित है, ये हमारे अंदर आने पर हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा। जब उसका जीवन हम में आता है तो हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वह ठीक कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में कई चमत्कार और संकेत करने में सक्षम है। क्या हम उसकी ओर देखें? वह यहोवा तक दया करेगा, वह सब विनाश से बचाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, शुक्रिया। कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं? परमेश्वर, हमें उन्हें ठीक करने और दर्द को ठीक करने, कमजोरी को ठीक करने, कैंसर पीड़ितों को ठीक करने, डेंगू बुखार पीड़ितों को ठीक करने की आवश्यकता है। कृपया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को ठीक करें। आने वाले नए साल को आशीर्वाद दें और इसे अच्छाई से भर दें। आपका नाम गौरवान्वित करता है। भगवान, आप जिस प्यार के लिए ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: रोमियो अध्याय 10:11।
2: क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित न होगा। हाँ प्यारे लोगों, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हमारे सामने कई समस्याएं हो सकती हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो सदा रहता है। हमें बस इतना करना है कि उस पर पूरा भरोसा करें। बेशक हमें डरने की जरूरत नहीं है। निश्चय ही ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। किसी बात की चिंता मत करो। अगर आपको कोई कमजोरियां नजर आती हैं तो घबराए नहीं। मरकुस की पुस्तक 9:23। ये क्या बताए? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। परेशान मत होइए। हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय पवित्र स्वर्गीय पिता, शुक्रिया। इस खबर को सुनने वाले लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक चीजें करें। हमें बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ना सिखाएं। पापा, चमत्कार और चमत्कार करो। अपने बच्चे के आंसू पोछो। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ।

चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस गीत से परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की।

मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है।

एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया।

मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ प्यारे लोगों, इस दुनिया में कितने बोझ हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी थकान है, क्या करें? हमें अपनी सारी चिंताओं को मनुष्य को बताना बंद कर देना चाहिए और अपने प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहिए। हमारे दिल में जो भी चिंताएं, बोझ, दुख और दर्द हैं, उन्हें हमारे प्रभु समुदाय में बताया और प्रार्थना की जानी चाहिए। हमें किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। हन्ना स्त्री ने वैसा ही किया। न जाने कितने लोगों ने संतान न होने पर उनके बारे में अभद्र बातें की होंगी। हो सकता है कि उन्हें बहुत सी पीड़ाएं, दुख और चिंताएं हुई हों, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की। उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में डाल दिया और उसके बाद शोक नहीं किया। हमें यही करना चाहिए। किसी के पास जाकर बताने का कोई मतलब नहीं है। हर दिन हमें अपने बोझ, अपनी चिंताएं, अपने दुख, सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में डालना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी चिंता दूर करेगा और निश्चय ही हमारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। भजन संहिता अध्याय 62:8। उसे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि वे यह समुदाय में क्या करना चाहता है? हमारे दिलों में चाहे कितने भी बोझ और चिंताएं हों, हमें उनके चरणों में कहना चाहिए। जितना चाहो उससे कहो। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप इतने लंबे समय से ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमारी प्रार्थनाओं को तब सुनता है जब हम हृदय के बोझ और चिंताओं को उसके सामने रखते हैं। इसलिए लोगों को बताना बंद करो। परमेश्वर को अपनी चिंता बताओ। प्रभु निश्चित रूप से आपके सभी आंसुओं को बदल देंगे, आपके सभी दुखों को बदल देंगे और आपकी सभी ऋण समस्याओं, बीमारियों, कमजोरियों, बीमारियों को बदलकर आपको आशीर्वाद देंगे। क्या आप चिंतित हैं कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं कि आपको बच्चा पैदा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही आप पर चमत्कार करेगा। निराश मत होना। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पापा। विभिन्न ऋण समस्याओं वाले परिवारों की ऋण समस्याओं को बदलें। आप ही हैं जिसके पास दौलत है। जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें संतान होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हमें पढ़ने वाले छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। हमें बारिश से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर घर बनाने की जरूरत है। हम आपसे इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने के लिए कहते हैं। बस अपने नाम की महिमा करो। हर परिवार को आशीर्वाद और प्रगति दें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारे पापा, 42 की पुस्तक। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। वह सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तुम्हारा ऋण अवश्य चुकाएगा। परमेश्वर आपकी चिंता बदल देगा, आपकी समस्या को दूर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को अच्छी बुद्धि देगा, प्रभु ज्ञान देंगे, वे अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। किसी बात की चिंता मत करो। आपको क्या लगता है कि पैसा कैसे चुका सकता है? भगवान सब कुछ करेगा। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वह जो भी फैसला करेगा उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वह जो सोच रहा है उसे बाधित किए बिना वह निश्चित रूप से आपका जीवन करेगा। प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। योएल की पुस्तक अध्याय 2:21। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा क्यों कहता है मत डरो और आनंद करो? हम सोचते हैं और हमारी आत्मा में बहुत भ्रम पैदा करते हैं। पूरा शरीर कमजोर हो जाता है तो वह हमें दिलासा देता है।
है देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ संभाल लेंगे। परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा। हमें आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके आभारी हैं। आपको उन लोगों का कर्ज चुकाना होगा जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। बीमार लोगों को चंगा करना चाहिए, कमजोरों को अच्छी रिहाई दें, अपने नाम की महिमा करो। हम यीशु की स्तुति करते हैं। जो लोग शैतान की शक्ति में फंस गए हैं और भय और पीड़ा से पीड़ित हैं, उन्हें अच्छा उद्धार दें। समस्याओं और चिंताओं को दूर करें, भगवान की कृपा उन्हें घेर ले। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आप सभी की जय हो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक का प्रार्थना को यीशु के नाम अध्याय 5:13 का सुसमाचार। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक नमकीन हो। नमक पानी में कैसे घुलता है, उसी प्रकार हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हम नमक बनना चाहते हैं। हम नमक का और क्या उपयोग करते हैं? नमक स्वाद देगा। क्या बिना नमक के खाना संभव है? नहीं खा सकते हैं। नमक खाने को खराब होने से बचाता है। नमक अचार को खराब होने से बचाता है। उसी तरह हमें किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें खराब होने का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत है, केवल स्वाद के लिए नमक। हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नमक का और किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है? औषधि के रूप में भी कार्य करता है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, दूसरों को ठेस न पहुंचाएं। हमें यथा संभव मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। सोचिए हमारा जीवन कैसा है। क्या हम नमकीन हैं? या हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मुझे नमक में बदल दे। हमें प्रभु के लिए उपयोगी होना चाहिए। हाँ प्रियो, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9:49, क्योंकि हर एक जनवरी आग से नमकीन किया जाएगा। हाँ प्यारे लोगों, यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल एक की अभी सुलग जाती। अगर परमेश्वर की आग हम में आती है तो हम नमक बन जाएंगे। हम दुनिया के लिए नमकीन होंगे। हम लोगों के लिए उपयोगी होंगे। हमें हर दिन प्रभु के योग्य जीवन जीना चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के ज्वलंत अभिषेक को सुनने और प्राप्त करने के लिए, हे यहोवा, मुझ पर आग लगा दे। तुमने कहा था कि तुम धरती पर आग लगाने आए हो। प्रभु से विनती कर, अपनी आग मुझ पर भेज। प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। वह तुम्हें नमक की तरह इस्तेमाल करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो तेरा जीवित वचन सुनता है, वो तेरी आग उन पर बरसाए। सराप आए तो हम दुनिया के लिए नमक बन सकते।

0: आप इसे करने जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। हम आपको महिमा और सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता अध्याय 1 की पुस्तक।
0: इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। शायद आपको लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ एक बाधा है। जो कुछ भी लिया है वह नुकसान है। किसी चीज में लाभ नहीं है, ये कठिन है। क्या आपको लगता है कि हर चीज में आंसू और दर्द होता है? दया है वह मनुष्य जो प्रभु के वचन पर मनन करता है। हमें यहोवा के वचन से प्रेम करना है, दिन रात ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसे हैं, तो हम जो करेंगे वो सफल होगा। प्रतिदिन प्रभु के वचनों का पाठ करें। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का ध्यान करें, तब तुम धैर्य हो जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करेंगे और निश्चित रूप से आपको शांति और खुशी देंगे। निश्चित रूप से यकीन है कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद और ऊंचा करेंगे। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को पूरी तरह से दूर करें। ऐसी कई चीजें हैं जो उन्हें वो करने से रोकती हैं, जो वे करते हैं। सभी समस्याओं को बदलें। आपको हर चीज से छुटकारा चाहिए। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सब कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। गुड फादर, आमीन, आमीन।
2: हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे देश के लिए हमने अभी परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हमने प्रार्थना करी, उसकी सुरक्षा के लिए उसको आशीर्वाद करते हुए। क्यों ना हम एक गीत को भी प्रार्थना के रूप में परमेश्वर की तरफ उठाएं। और साथ साथ में एक घोषणा भी है इस गीत में। कितने लोग मेरे साथ जुड़कर इस गीत को गाना चाहेंगे? एक प्रार्थना के साथ साथ एक घोषणा।

हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमारे भारत देश का नाम है, आमेन। कितनों ने पढ़ा है? अमेरिका का नाम नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, लेकिन भारत का नाम हम हमारे परमेश्वर के वचन में, हमारे बाइबल में, आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है उसमें एक नहीं लेकिन दो बार पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन में हमारे भारत ने स्थान पाया है तो जरूर परमेश्वर के दिल में उसके लिए खास योजना है, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो योजना पूरा होते हुए अपनी आंखों से आप देखेंगे, आमेन। चाहे पूरी दुनिया, पूरा नरक उस परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो ठाना है वो हमारे देश में पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अगर दो बार नाम लिखा है तो हमारे देश में परमेश्वर दुगना बेदारी, डबल रिवाइवल भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे इस विषय में बातचीत किया है और पिछले 19 साल से इसी विषय के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ मेरी ही पीढ़ी में कम से कम इन बातों का शुरुआत में देखकर ही मेरी आंख बंद होंगे, आमेन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा फर्ज है हम प्रार्थना करते रहें इस विषय के लिए, जो इच्छा परमेश्वर के दिल में है, जो योजना परमेश्वर ने हमारे देश के लिए बनाई है उसको हमें स्वर्ग से उतारना है, आमेन। कई सारी बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं आया, ये सब बनाकर किस लिए रखा है परमेश्वर ने? स्वर्ग में रहने के लिए नहीं, लेकिन धरती पर इन बातों को प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से उतारने के लिए, आमेन। हालेलुया। आज जब हम विश्वास से गाएंगे बजाएंगे परमेश्वर की यह की स्तुति आराधना, जब हम करेंगे स्वर्ग हमारे मध्य में उतर आने पाए, स्वर्ग इस शहर में उतर आने पाए, स्वर्ग हमारे देश में उतर आने पाए। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।

काल तक, हालेलुया, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, ओ गॉड, यू आर द एवरलास्टिंग गॉड, यू आर द वन हु सीटेड ऑन द थ्रोन एंड यू रेन फॉरएवर, ओ गॉड, हालेलुया, वी डिक्लेयर योर किंगडम, वी डिक्लेयर योर रेन, ओ गॉड, हालेलुया, ओवर आवर लाइव्स, ओवर योर चर्च एंड ओवर दिस नेशन एंड दिस सिटी, ओ गॉड, दिस मॉर्निंग, हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, कम एंड टेक योर प्लेस, वी प्रे इन आवर मिडस्ट, इन आवर लाइव्स and in this nation, and have your way, perfect your will, the one that you designed even before the foundations of the world. Fulfill that, lead us to that, we pray, and for that we commit our lives. Hallelujah. आज का ये दिन किसने बनाया? आज का ही नहीं, हर दिन किसने बनाया? किसने बनाया? थोड़ा जोर से बोलें। यस, ये अकस्मात नहीं है, हम यहाँ पर अकस्मात नहीं है, ना हम, हमारे पास ताकत है, हमारे पास दौलत है, इसलिए नहीं कि आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की प्योर मर्सी, ये उसकी करुणा, उसकी दया है, अगर आज हम जीवित हैं तो, आमेन, हालेलुया। इसलिए हर दिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में दान के रूप में देता है, उसमें हम उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ाई करें, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आए मिलकर, आप काफी देर से बैठे हुए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए, जिसको मतलब अगर आप को कोई दिक्कत नहीं है खड़े होने में, तो मैं चाहूंगी कम से कम इस अगला गीत के लिए हम लोग खड़े हो जाएं, और जैसा गीतकार कहता है आओ हम गाएं, हम नाचें, क्योंकि बैठकर तो नाचना मैंने आज तक नहीं सीखा है, तो आपने सिखाया तो जाने से पहले मुझे भी सिखा के जाइएगा, खड़े होना पड़ता थोड़ा नाचने के लिए, और मसीह लोग झूठ बोलना भी नहीं और गाना भी नहीं, इसलिए मैंने आपको खड़ा किया है, तो ताकि हम सच्चाई से, जैसे पासबान जियो से हमने सुना, पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है, तो हम जो बोलते हैं हम कोशिश करें कि हमारे हमारे एक्शंस के द्वारा भी उसको हम प्रकट करें। जब हम हाथ उठाने के लिए कहते हैं तो हाथ बांध कर ना रखें, अगर हम नाचने के लिए कहते हैं तो हम थोड़ा सा हिले तो सही, अगर नाचे नहीं तो कम से कम हिले तो सही, ठीक है। सियोन पर्वत के समान मैं अटल रहूंगा, यहां से इधर भी उधर भी नहीं हिलूंगा, ऐसा कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होना, ठीक है। तो आए मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा।

बहुत निराशा है आज, है क्या? तो आज हम उसको भगाने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मसीह क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा का आशा हमारे अंदर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ भी आ जाए, हम उसको चुनौती देते हैं, हम हमारे समस्याओं को चुनौती देते हैं। समस्याओं को हम अधिकार नहीं देते कि वो हमारे ऊपर राज करे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम फूले फले और सारी पृथ्वी के ऊपर हम राज करे, शासन करे, अधिकार रखे। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले तो हम अपनी समस्याओं के ऊपर अधिकार रखना और राज करना सीखे, फिर सारी धरती पे रखेंगे। हालेलुया। कई बार तुम छोटी छोटी जो परेशानियां या बीमारियां या तकलीफें जो आती है, तंगी आती है, तो हम उसके नीचे दब के रहते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हमें उसके ऊपर राज करें। आएंगी बातें, सब आएंगी, तभी तो हम प्रभुता की, यीशु की प्रभुता की घोषणा और जो अधिकार उसने हमें दिया है, उसके नाम में जो दिया है, हम उसको जताएंगे। हालेलुया, आमेन।

यीशु मसीह हमारे संग है तो क्यों डर रहे हो? अरे मुंह लटका के मत खड़ो भाई बहन, लेकिन अगर यीशु अंदर है तो हमारे अंदर आनंद की भरपूरी होगी। आमेन। और भरपूरी है तो वो दिखता है ना। कोई भी चीज अगर उमड़ेगा तो वो फैलता है, वो दिखता है। आमेन।

0: विश्वास करके है बड़ा हमें कोई नहीं तेरे बिन।
1: यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करना, कल आप ही अपनी चिंता कर लेगा, क्योंकि आज ही इतनी सारी बात है ना। और यीशु मसीह ने ये भी कहा क्योंकि कल तो कभी नहीं आएगा ना, हम तो आज में जी रहे, हम तो कल में नहीं जी रहे, ना हम बीते कल में जीते हैं ना हम आने वाले कल में जीते हैं। हाँ विश्वास अलग बात है, लेकिन हम तो आज जी रहे हैं, है ना। अगला क्षण किसने जाना, कल किसने जाना, इसलिए हर दिन आज उस दिन में हम क्या है, हम ये ना सोचे हम कल कल के लिए कल आराधना करेंगे, कल परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, नहीं। जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम पूरे भरपूरी के साथ, क्योंकि यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आमेन, हालेलुया। बहुतायत मतलब सामानों का नहीं, चीजों का नहीं, धन दौलत की नहीं, वो देता तो ले लो, लेकिन उससे बढ़कर हमारा अंदर का जो भावना है वो कैसा होना चाहिए, बहुतायत, बहुतायत की खुशी, बहुतायत का आनंद, बहुतायत का क्या बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुतायत का प्रेम जो आत्मा के फल है ना, सारा उस सब का बहुतायत को हमें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुभव करना है। आमेन, हालेलुया। थोड़ा बहुत तो अनुभव करने वाले जोर से हालेलुया बोले।

जो आप हमें देते हैं परमेश्वर, हम उसको लाइटली ना ले, उसको तुच्छ ना जाने परमेश्वर, कि आज हम हैं तो कल भी हम रहेंगे, लेकिन हर पल प्रभु, हालेलुया, enable us to be God conscious, हालेलुया, yes Lord, हालेलुया, yes your love conscious, your mercy conscious, oh God, हालेलुया, आपकी करुणा दया का परमेश्वर, हर पल प्रभु हम उसके प्रति, हालेलुया, प्रभु जागरूक रहें, yes, इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके योग्य हैं, इसलिए क्योंकि तू, तेरा ये प्रेम है परमेश्वर, हालेलुया, हाँ प्रभु, और हमें मदद कर, जैसे गीतकार कहता है, हर दिन हम तेरी स्तुति करें, हर पल हम तेरी महिमा गाएं परमेश्वर, क्योंकि इसलिए तूने हमें रचा है कि हम तेरे साथ संगति करें, तुझसे प्रेम करें, तेरे साथ हम एक हो जाएं परमेश्वर, हालेलुया।

स्वर्ग में करोड़ों दूर इसलिए बनाए गए कि वो परमेश्वर की याद की महिमा करें, स्तुति आराधना करें। उन्होंने उद्धार क्या है नहीं जाना है। मैं सोचती हूँ उनका ड्यूटी है कि वो परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन हमारी कहानी अलग है। ये हमारी कोई ड्यूटी तो नहीं, लेकिन क्या होगा, ये हमारा प्रेम है, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया और उस प्रेम को हमारे अंदर उंडेला कि आज हम वापस उसे प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, पहली और आखिरी मैं सोचती हूँ सबसे महान आज्ञा ये है कि हम अपने पिता से, यहोवा से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, शक्ति से, प्राण से, सबके साथ, जैसा भजनकार लिखता है, जो कुछ मुझ में है उस सबके साथ हम उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा गाएं, उसको प्रेम करें। तो क्यों ना उन करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम इन पंक्तियों को उठाएं।

आज का वादा इब्रानी अध्याय 13:6। इसलिए हम बेदर्प होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर हमारा सहायक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको किसी से धमकी भरा पत्र मिलता है या आप मुसीबत में हैं? उसने मुझ पर मुकदमा किया, क्या आपको इसकी परवाह है? परमेश्वर हमारा सहायक है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो परमेश्वर हमारे भीतर है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो घबराए नहीं। अगर आपके खिलाफ कई लोग उठ खड़े हों तो चिंता न करें। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। कोई भी समस्या आपको नष्ट नहीं करेगी। उससे प्रार्थना करो, वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। निश्चय ही यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, 1000 धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु, इस शो को देखने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनका उत्थान करें, उनके जीवन में महान कार्य करें और महान कार्य करें। मैं आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। बहुत से लोग पैसे की समस्या से पीड़ित हैं। उनकी पैसे की समस्या को बदलना चाहिए परमेश्वर। सोना चांदी तुमने कहा था कि सब कुछ तुम्हारा है। तुमने कहा था कि तुम उन्हें चांदी और सोने से समृद्ध करोगे, उनके जीवन में बड़े चमत्कार करें और अपने नाम की महिमा करें। उनके आंसू बदलो, उनकी चिंताओं को बदलें। वे इस दिन से आगे आपका आशीर्वाद, शक्ति और अनुग्रह देखें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आप उसके जीवन में सब कुछ करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं आपको 1000 धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें सारी महिमा और अनुग्रह देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन, आमीन।

0: परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए।
1: जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर

जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है।

0: का वादा भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 121 पद 6। दिन में सूरज की रोशनी या रात में चांद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ प्रियो, इन दिनों हम सुबह धूप और रात में ठंड पाते हैं। इन अंतिम दिनों में यही होगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि न तो सूरज और न ही चांद हम पर दिन रात हमला करेगा। ये हम सभी के लिए बहुत शांत इलाता है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 16 पद 8-9। चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से जलाने का अधिकार दिया गया। मानव जाति गर्मी से झुलस गई थी और उसने परमेश्वर के नाम की निंदा और महिमा करने से पश्चाताप नहीं किया, जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार था। इन छंदों के माध्यम से परमेश्वर ने प्रकट किया है कि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और आग से तबाही होगी, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा और पश्चाताप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रभु कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 पद 10। वे भूखे और प्यासे होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। प्रभु का शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 4 पद 6। वह दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और छड़ी में एक शरण और आड़ होगा। मत भूलो, निश्चय ही परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मेरा आपको धन्यवाद। चमत्कार करो, चमत्कार करो भगवान। जीवन, सुख और शांति दो। उनके आंसू पोछो और उनके दुखों को बदलो। ऐसे में कई लोग अपने केस को लेकर चिंतित रहते हैं। हे प्रभु, उन्हें शांति दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आनंद दे। हे प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा दे। केवल आप ही उन्हें खुशी और सुरक्षा दे सकते हैं। केवल आप ही उन्हें शांति दे सकते हैं। उन्हें आराम और शांति दो और अपने नाम की महिमा करो। शुक्रिया। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन। श्लोक 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हाँ प्रियो, घोड़ा युद्ध के दिन के विरुद्ध तैयार है। इस तरह हम वही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन जीत परमेश्वर की तरफ से होती है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसमें प्रभु को सफलता अवश्य देनी चाहिए। उच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं? केवल परमेश्वर ही आपको सफलता दे सकते हैं। उससे नियमित रूप से प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, बाइबल पढ़ें और विश्वास करें कि हमारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो पहले ईश्वर को खोजिए। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके दम की खोज करो और ये सब भी तुम्हें दिया जाएगा, तभी वो आपको जीत दिलाएगा। अपने जीवन में हर चीज में परमेश्वर को पहले रखें, उसे अपने सामने रखें और परमेश्वर आपको ये सब देगा। वह सफलता लाएगा। आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। यदि आप व्यापार में असफल होते हैं तो भी परमेश्वर आपके परिवार में परेशानी, आंसू, चिंताएं बदल देंगे और परमेश्वर जरूर बदलेंगे। प्रार्थना करो और देखो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार और लाभ करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें विजय प्रदान करेगा। वह तुम्हें कर्ज से मुक्त करेगा और तुम्हें आंसुओं से मुक्त करेगा। केवल वही आपको मुक्त कर सकता है। आप पूर्व या पश्चिम से नहीं जीतेंगे। सफलता किसी जंगल से नहीं मिलती, विजय प्रभु की ओर से आती है। परमेश्वर की स्तुति करो जो हमें विजय प्रदान करता है। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत से लोग अपने पेशे के बारे में चिंता करते हैं। वे चिंतित हैं कि मेरा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। परमेश्वर उनके जीवन को आशीर्वाद दे और उन्हें जीवन में सफल बनाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो व्यापार के नुकसान से चिंतित हैं। उन्हें सफलता दे, उनके जीवन में अच्छे काम करें। चमत्कार और चमत्कार करो प्रभु। छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करें और बुद्धि और स्मृति देकर सभी परीक्षाओं को पास करें। उन पर दया करो प्रभु। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। हे परमेश्वर, उन्हें सब रोगों से चंगा कर और अपने नाम की महिमा कर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ईशु के नाम से पूछता हूँ। अध्याय 10 37 38 क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और मेरा गर्मी जनवरी विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वे यहाँ पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। लेकिन हमें वफादार होना चाहिए। वापस नीचे मत जाओ। तब जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं वे परमेश्वर के आने पर नहीं जा सकते। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पद 39 पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। किसी भी हाल में पीछे न हटें। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दुनिया की चीजों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लूत की पत्नी की जान चली गई क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। वापस नीचे मत जाओ। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, परमेश्वर पिता, हम आपकी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, उनके परिवार में समस्याओं को बदलें। उन्हें उनकी बीमारी से छुड़ाओ, उनके आंसुओं से छुड़ाओ, शाप और उनके पापों को छुड़ाओ, उनकी चिंताओं से छुटकारा पाओ। परमेश्वर, जो अभी यात्रा कर रहे हैं उन्हें बचाओ। परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। वे चिंतित हैं कि मेरे परिवार में हमेशा कोई समस्या है। उन्हें बचाओ और अपने नाम की महिमा करो परमेश्वर। उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें ऊपर उठाओ। हे प्रभु, अपने बच्चों को बिना पीछे मुड़े जीने में मदद करें। अपने आगमन के लिए सभी को तैयार करें। मैं आपको सारी स्तुति महिमा और सम्मान देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। यशायाह की पुस्तक अध्याय 54 पद 5 और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हाँ प्रियजनों, क्या आप परमेश्वर का नाम जानते हैं? वह एक नाम रक्षक है। वह हमारा उद्धार करता है। रोग से पीड़ित होने पर दिन कब आता है और रात कब आती है कि हमें सताया जाता है? परमेश्वर हमें सब कुछ से छुड़ाएगा। वह हमारा उद्धार करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। वह हमें हर हाल में आजाद कर देगा। कर्ज की समस्या के बारे में चिंता मत करो, आंसू पोंछ लो। भजन संहिता की पुस्तक 39वें अध्याय श्लोक 15 परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम बचाए जाएंगे और नरक की शक्ति से मुक्त होंगे। तो चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछो। वो हमारा उद्धार करता है। हम उसे मजबूती से पकड़ेंगे। हम जीने के लिए उस पर निर्भर रहेंगे। नित्य प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागते रहो। निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता, जो प्यार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। अब अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, उनकी रक्षा करें। उनमें से प्रत्येक शाप, पाप, आंसू, दर्द, ऋण, बीमारी और पीड़ा से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, आत्मा को अंडरवर्ल्ड की शक्ति से बचाएं। प्रभु महान कार्य करें। आशीर्वाद आराम देना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह का वादा अच्छे पिता के नाम से अध्याय 14 पद 16 आमीन। प्रिय भाइयों बहने, ईश ने कहा, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन है ये दूसरा कम्फर्टेटर? वह पवित्र आत्मा है। एक अन्य कम्फर्टेटर का अर्थ है सहायक। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है अय्यूब अध्याय 33:4, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। वह वही है जिसने हमें बनाया है। शास्त्र कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा तो हम सभी चीजों में मुक्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ईश ने कहा प्रेरितों के काम अध्याय 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के सर्व भाग तक मेरे साक्षी बनोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है हमारी आत्मा और शरीर को समृद्ध करती है। वह हमें गवाह के रूप में बदल देता है। और शास्त्र एक और महत्वपूर्ण बात कहता है 1 यूहन्ना अध्याय 12:27, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इसलिए आज ही पवित्र आत्मा प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा दें। पवित्र आत्मा का अभिषेक अनिवार्य है, जरूरत है। लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य दें। वे जहां भी जाएं उनकी रक्षा करें। सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और ऊपर उठाएं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ यहोवा। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
1: प्रथम यूहन्ना अध्याय 5:18 की पुस्तक।
0: हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ प्यारे लोगों, हम कैसे समझ सकते हैं कि हम भगवान से पैदा हुए हैं? बाइबल कहती है 1 यूहन्ना अध्याय 4:7 की पुस्तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो लोग परमेश्वर से पैदा हुए हैं उनके पास प्रेम पूर्ण मन और कर्म होगा। वे परमेश्वर और दूसरों से प्यार करेंगे। इसलिए जॉन कहते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 4:11 की पुस्तक। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्यार उनके लिए निशानी है जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें इस दुनिया में एक प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ईश ने कहा पुस्तक यूहन्ना अध्याय 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए। प्रेरित यहूदा भी इसे इस प्रकार कहते हैं पुस्तक यहूदा अध्याय 1:21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आभारी हृदय से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। कृपया फिर से नया जन्म लेने में मदद करें। हे परमेश्वर, हर उसको आशीष दे जो तेरी सुनता है। उनके आंसू पोंछें और उनकी परेशानियों को बदलें और उनकी सभी समस्याओं को दूर करें। मेरे प्यारे पिता, उन लोगों को ठीक करो जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं। परमेश्वर, उन लोगों को चंगा करो जो किसी भी कमजोरी से पीड़ित हैं। प्रभु, सभी मंत्रों को कुचल दे, उनके जीवन में चमत्कार होने दे, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें प्रभु उठो। हमें फिर से जन्म लेने में मदद करें। आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिताजी, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से
1: यशायाह 52:12,
0: आमीन।
1: क्योंकि यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और इसराइल का परमेश्वर तेरा प्रतिफल होगा।
0: हाँ प्रियो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं यहोवा आपके आगे आगे चलता है। तुम चिंता मत करो, शायद साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं।
1: यहोवा तेरे आगे आगे चलकर बड़े बड़े काम करेगा। यशाया अध्याय 45 पद 2 की पुस्तक कहती है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ प्रियो, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और कुटिलों को सीधा करेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और भगवान आपके जीवन में महान कार्य करते हैं, तो वे आपकी सभी बाधाओं, कठिनाइयों, आंसुओं और दर्द को बदल देगा। कभी चिंता मत करो, बेशक आपको काम मिल जाए। क्या आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं? प्रभु आपके आगे आगे चलेंगे और आपको परीक्षा में सफल होने की बुद्धि देंगे। चिंता मत करो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो और चले जाओ, वह महान कार्य करेगा। क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। हम आपके आभारी हैं। जो लोग काम पर जाते हैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता दें। आपके नाम की महिमा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस लिए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा रखें, सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। आप सभी की जय हो। हम यीशु मसीह अच्छे पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: जॉन अध्याय 14 पद 27 का सुसमाचार।
1: इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हाँ प्यारे लोगों, दुनिया जो शांति देती है वो टिकाऊ नहीं होती, लेकिन जो शांति यीशु देता है वो चिरस्थाई है। स्थाई? क्या आप शांति के बिना हैं? आज ही प्रभु के पास आओ और अपने हृदय में उसे पुकारो, वह तुम्हें शांति देगा। वह कहता है यशाया की पुस्तक अध्याय 66 पद 13, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अजातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर से शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। वह शांति का प्रभु है। पॉल कहते हैं 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 पद 16, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं यहोवा की स्तुति करता हूँ। अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करें और उनके जीवन में अच्छे चमत्कार और चमत्कार करें और केवल अपने नाम की महिमा करें। कृपा और अच्छाई उनकी रक्षा करें। उनमें से सभी बाधाओं को पूरी तरह से हटा दें। हे प्रभु, उन सबों को आशीष दे जो इन जीवित वचनों को सुनते हैं। उन्हें मजबूत करें, उन्हें शांति और आनंद का आशीर्वाद दें। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
0: यशाया प्यारे पुस्तक अध्याय 25 पद 9,
1: हम इसे की बात जोहते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है। हाँ प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। वह हमें पाप, शाप और आंसुओं से बचाएगा। मैं इस पाप को नहीं छोड़ सका। मुझे लगता है कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप चिंता करते हैं कि मैं अनजाने में पाप करता हूँ? वह तुम्हें अवश्य बचाएगा। वही बचा सकता है। वह उद्धार करता है जिसके पास आपको पाप से बचाने की शक्ति है। वह कर सकता है। हतोत्साहित मत हो। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दो और प्रार्थना करो। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा। वह अवश्य बचाएगा। मैथ्यू अध्याय 1 श्लोक 21 का सुसमाचार, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को उनके पापों से बचा सकते हैं। तुम उसके पास आओ और देखो। इतना ही नहीं, लेकिन खुद को समर्पित कर दो। प्रभु आप हमारे उद्धार करता है। केवल तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। मुझे अपने पाप, श्राप और आंसुओं से मुक्ति चाहिए। हे प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन में महान कार्य करें। यदि हम आंसुओं के साथ पूछें कि प्रभु निश्चित रूप से उद्धार करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञतापूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु उन सभी को क्षमा प्रदान करें जो अपने आप पाप को न छोड़ने के कारण पीड़ित हैं। आप उद्धार देने वाले प्रभु हैं। हम बच्चों के उद्धार और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को सभी लोगों को सहन करने दो। सभी लोगों को अपनी महिमा से ढक दो। पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं, हर जीवन में बड़ा काम करो। आपको आशीर्वाद देना चाहिए। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक वादा के नाम प्रेरित पत्रस लिखता है।
0: आमीन।
1: दो पत्रस पुस्तक अध्याय 1:19। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। अंधेरे में केवल प्रभु का शास्त्र ही चमकता है। हमें उस शास्त्र को देखने की जरूरत है। प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करें और मनन करें। दिल में अंकित हो जाना, तदनुसार किया जाना है, तब परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसी कारण भजनहार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119:105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके अलावा भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 119:130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अहमियत दो। इसलिए पत्रस लिखता है, 1 पत्रस पुस्तक अध्याय 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु के शास्त्रों को अपने भीतर रखने से न केवल हमें अंधेरे में प्रकाश मिलता है, बल्कि हमारे रास्ते फिसलने से भी बचते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 37:31, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें, और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। एक साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ।
0: यूहन्ना अध्याय 4:4, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जादू से प्रभावित हुए हैं? इसे देखने से डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह महान है, वह आपकी समस्या से बड़ा है। कोई समस्या कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर जो हम में है वह महान है। चिंता मत करो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21 की पुस्तक कहती है, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। हमारे पास जो विरोध आ रहा है उसे देख कर डरो मत, परेशान मत हो, क्योंकि यहोवा महान है, वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं।
1: कितने लोग परेशान हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक समस्या है, मुझे बहुत समस्या है। मेरे पास ब्याज ऋण है और लोग चिंतित हैं कि मैं इस ब्याज ऋण का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। ऑफिस में किसी तरह की परेशानी होने से कुछ लोग परेशान हैं। हर आंसू पोंछो और सभी समस्याओं को बदलो और हर लोगों को आराम और खुशी दो। प्रभु आपको महान कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन बच्चों को स्मृति अवश्य दे जो चिंतित हैं कि परीक्षा आ रही है। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि देनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आपको बड़ा काम करना चाहिए। प्रेम के परमेश्वर सभी को आराम, शांति और खुशी दे और उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं और हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: भजन संहिता
1: प्यारे पिता
0: आमीन।
1: अध्याय 28 पद 8। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर अभिषिक्त जनों का गढ़ और शरण स्थान है। जब वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ होगा तो हमें क्या खतरा होगा? कोई समस्या आ रही है? जो भी समस्या उत्पन्न हो उसे परमेश्वर बदल देगा। चिंता मत करो, वह तुम्हारा आश्रय है। हमें प्रतिदिन अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। यहोवा यूं कहता है, देख कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 पद 17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरीने स्वप्न देखेंगे। हाँ प्यारे लोगों, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर की यही वाणी है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल रहा है। यदि तेरा अभिषेक किया जाए तो वही तेरा गढ़ और शरण है। तुझे कोई कमी न होगी, कोई खतरा नहीं होगा, कोई जादू और जादू टोना आपको छू नहीं सकता। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुक्रिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक से भरा होना चाहिए। तूने कहा है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पवित्र अभिषेक उन सभी पर उंडेलेंगे जो आपसे इस समय ये अभिषेक लेने के लिए कह रहे हैं। प्रार्थना करने वाले सभी का अभिषेक करें। हर जीवन में चमत्कार चमत्कार और लाभ करें। सभी को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम आपको सारी महिमा और धन्यवाद देते हैं। हम अपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: निर्गमन अध्याय 33 पद 17।
1: आमीन।
0: यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है।
1: हाँ मेरे प्यारे लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है। कितनी बार हम बड़बड़ाते थे कि भगवान मेरी समस्या नहीं जानता, वह मेरी चिंताओं को नहीं जानता। आप में से कितने लोगों ने बड़बड़ाया है? आज भगवान से क्षमा मांगे। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब नाम जानता है और आपकी जरूरत भी जानता है। वह आपकी कमियों और जरूरतों के बारे में सब जानता है। इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, गपशप नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें उससे कहना चाहिए कि वह आपको शुद्ध करे और उसके चरणों में आंसू के साथ आपके पाप को स्वीकार करे। निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 43 पद 1 की पुस्तक, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या तुमने मेरे प्यारे लोगों को देखा? भगवान ने आपको नाम से बुलाया है, तो डरो मत, तुम भगवान के हो। भगवान कहते हैं, तुम मेरे हो। हाँ, हम भगवान के हैं। एक दिन जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो मैं रोया कि कोई नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरा चुराने वाला जीवित है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो उस दिन से वे मेरे पिता माता बन गए और मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया। वह मेरा हाथ पकड़कर आज तक मेरा मार्गदर्शन करता आ रहा है। हर जरूरत को भगवान ने मेरी मदद करने के लिए एक व्यक्ति दिया है। मेरे प्यारे लोगों, क्या वह तुम्हारे लिए वह नहीं करेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है? तो रो मत। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आते हैं। जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करते हैं, उनकी समस्याओं को बदलते। भगवान, आप उनकी ताकत, आश्रय, छाया, शरण और गढ़ बनो। उनका नेतृत्व करो हे प्रभु। आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तेरी महिमा उन्हें उनके लिए अग्निगढ़ के समान खेले। महिमा में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हम जितना प्रार्थना करते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें देगा। उन्हें आशीर्वाद दें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें ताज पहनाएं और उनकी रक्षा करें। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक

0: अध्याय 16 श्लोक 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हमें हर दिन उसका चेहरा खोजना चाहिए। हर दिन हमें परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए और उसे खोजना चाहिए। वह हमारे लिए महान कार्य करेगा। हमें प्रतिदिन यीशु मसीह को खोजना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 16 श्लोक 11 कहता है, तेरे सामने आनंद की परिपूर्णता है, तेरी दाहिनी ओर सुख सर्वदा बना रहेगा। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। वह उपस्थिति में पूर्ण आनंद देगा। जब हम उसे रोज ढूंढते हैं, वह महान कार्य करेगा और हमें पूर्ण सुख देगा। इस दुनिया में चाहे कितनी ही चीजें क्यों न हो, हमें उन चीजों में शांति नहीं मिलेगी। घर के ऊपर घर बनाना। हमारे पास बहुत सारा सोना और सामान है। जिससे हम खुश नहीं हैं। हमें हर दिन यीशु मसीह की तलाश करनी चाहिए, वह बहुत खुशी देगा। प्रभु यीशु मसीह को खोजें और उनकी ओर देखें और उनके चरणों में सदैव प्रतीक्षा करें। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। केवल वही हमें वो शाश्वत आनंद दे सकते हैं। केवल वही हमें महान आशीषें दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास घर है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या आपको चिंता है कि मुझे शांति नहीं है? हाँ प्यारे लोगों, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करें। वह बहुत खुशी और शांति देगा। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो वे हमें वह आनंद देगा जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमारी आत्मा में जो आनंद है उसे कोई नहीं छीन सकता। जब हम उसकी तलाश करते हैं, हमें इतना बड़ा आनंद और शांति मिलेगी। तुम यहोवा को खोजोगे और उससे प्रार्थना करोगे, निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देने में समर्थ है। आपकी जो भी कठिनाइयां होंगी वह बदल देगा। तुम्हारे आंसू जो भी होंगे वह बदल देगा। प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, आंसुओं के साथ उससे पूछो, वह तुम्हें नौकरी देगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। आपके परिवार में कोई भी समस्या क्यों ना हो, वह इसे बदल देगा। हमें उन लोगों को बदलने की जरूरत है जो शराब के आदी हैं। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। चिंता मत करो, वह आपका सबसे बड़ा काम करेगा। अब हम उससे प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। बच्चों को किसी भी चिंता से मुक्त होने की आवश्यकता है। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें छोड़ दें और उनके लिए शराब पीना असंभव बना दें, भले ही वे पीना चाहें। चमत्कार करें। तूने कहा था कि मैं चट्टान को खड़ा जल और चकमक पत्थर को जल का सोता बनाऊंगा। कृपया बच्चों को बदलें और सभी के आंसू पोंछें। महान कार्य करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता अध्याय 16 पद की पुस्तक।
0: मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो, हे प्रभु मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो। और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा। वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर कुरेदित समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा। उन्हें वो सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दें। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय 27 पद 3। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। कोई जादू या जादू टोना हमें प्रभावित नहीं कर सकता। वह दिन रात हमारी रक्षा करेगा ताकि कोई हमें हानि न पहुंचा सके। वह दिन रात आपकी देखभाल करने का वादा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कोई आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वह दिन रात हमारी रक्षा करेगा ताकि कोई हमें हानि न पहुंचा सके। प्रभु को थामे रहो। भजन संहिता 145 अध्याय 20 पद की पुस्तक। यहोवा ने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। इसलिए हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। अगर हम सुबह उठकर प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें और हमेशा प्रभु के साथ रहें, तो वह हमें बचाएगा। हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने हृदय में प्रभु की आराधना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे हमें बचाएगा। मानव प्रेम सब एक भ्रम है, ये झूठ है। अगर आप यहोवा से प्यार करते हैं तो वे आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए बाइबल पढ़िए, मनन कीजिए और पूरे मन से प्रार्थना कीजिए, वह तुम्हें अवश्य बचाएगा। क्या हम उससे प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सभी लोगों का भला करे। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दे जो वचन को सुन रहे हैं। आपको सभी को शक्ति, शांति और खुशी देनी चाहिए। कृपया उनका ख्याल रखें। हे प्रभु, किसी भी जादू टोने से उनकी रक्षा करो। इस बारिश की बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, पापा इन्हें बचा लो। बारिश से प्रभावित बच्चों के आंसू पोंछें। स्कूल और कॉलेज जाने वाले हर छात्र की सुरक्षा करें। सभी नुकसान से बचाएं। उन सभी पर शासन करो। आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम आपको सभी स्तुतियों की महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: आज का वादा, योएल की पुस्तक अध्याय 2 पद 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक की तलाश में हैं। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने और वैसे भी उसे जानने की लालसा रखते हैं। निश्चय ही यहोवा पवित्र आत्मा का अपना अभिषेक तुम पर उंडेलेगा। इसलिए उन्होंने वादा किया था। जॉन अध्याय 16 पद 13 का सुसमाचार। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ प्यारे लोगों, ज्यादातर लोग सच्चाई नहीं जानते हैं।
0: जब पवित्र आत्मा आप में आता है तो वे आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताता है। आइए अभिषेक ग्रहण करें। आइए आज प्राप्त करते हैं। आप कहते हैं कि मैं बाइबल नहीं समझता। वह निश्चित रूप से आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताएगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। भगवान सब पर कृपा करे। शास्त्रों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि और बुद्धि दो। उन्हें अपनी दया दो। पवित्र आत्मा जो सब कुछ सिखाती है, सब सिखाया जाना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन।
1: इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आँखों के सामने करने पर है। हाँ प्यारे लोगों, आप उस महान कार्य को देखने जा रहे हैं जो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। कभी मत थकना कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। रुको और देखो, निश्चय ही यहोवा हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। नौकरी नहीं मिलने से थक गए हैं? चिंता है कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है? निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। यीशु महान कार्य करेगा। चिंता मत करो। निर्गमन अध्याय 14:13 कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। उद्धार का अर्थ है स्वतंत्र मुक्ति। प्रभु आपके जीवन में महान मुक्तिदाता है। न केवल आप पाप से मुक्त होंगे, बल्कि प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके दुखों से, आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपकी पुरानी बीमारी से और आपकी पुरानी कमजोरी से मुक्ति दिलाएगा। चिंता मत करो। क्या हम परमेश्वर की ओर देखें? यीशु निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें बदलने और महान कार्य करने वाले हैं। उद्धार का अर्थ है महान मुक्ति। वह आपके जीवन में बड़ी मुक्ति लाने वाला है। कर्ज की समस्या या शैतान की पट्टियां, जादू टोना पट्टियां, क्या तुम बीमार हो? कुछ भी हो, प्रभु आपको छुड़ाने वाले हैं। तो अपने आंसू पोंछ लो, वह तुम्हारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपने बच्चों के जीवन में आंसू पोंछे जो आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं। चिंता को बदले, समस्या को खत्म करें। चमत्कार और चमत्कार करो। उन लोगों को अच्छी नौकरी दें जिन्हें नौकरी न मिलने की चिंता है। विवाह होने से करना चाहिए जिन्हें इस बात की चिंता हो कि विवाह नहीं होगा। आपको पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। नकदी की सभी समस्याओं और कठिनाइयों को बदलें। आस पड़ोस में लड़ते हुए आपको उन लोगों को मुक्ति देनी चाहिए जो बेचैन, चिंतित, थके हुए, दर्द में और अभिभूत हैं। बेघर बच्चों के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहिए। पूरे परिवार में झगड़ों और परेशानियों से परेशान लोगों को इस संघर्ष से मुक्त करें। उन लोगों को रिहा करो जो चिंता करते हैं कि मेरे पति मेरे घर में शराब पी रहे हैं और मेरे बच्चे पी रहे हैं। हम शराब और नशीले पदार्थों के आदि उनके रिश्तेदारों की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा करो। उनके सब संकटों को दूर करो और अपने नाम की महिमा करो। इस वचन के अनुसार कि तुम उस मिस्री को कभी नहीं देखोगे जिसे यहोवा ने आज देखा है। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी की स्तुति और स्तुति करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना अध्याय 14:27 की पुस्तक।
0: तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि परेशान और डरो मत। इस दुनिया में जो भी समस्या आएगी भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए परेशान और डरो मत। प्रभु यीशु मसीह की यही वाणी है, मैं सब विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। यशाया की पुस्तक अध्याय 49:16। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपनी हथेलियों में खींचा है। उसके हाथों को पीटा और कुचला गया था। उस हाथ में वह हम सभी को गढ़ा गया है। यदि आप अपनी हथेली में पैसा रखते हैं, तो क्या आप इसे नीचे रखेंगे? हम अपनी हथेली में जो कुछ भी रखते हैं उसे नीचे नहीं छोड़ेंगे। हम इसे कितना सुरक्षित रखेंगे? मनुष्य इस हद तक रक्षा करता है कि हम का रचिता हमें अपनी हथेली में कितना रखता है और हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें सहारा देता है और अपने प्रेम से हमें गर्म करता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सबको सुख और शांति दो। सभी को आशीर्वाद दें, रक्षा करें और ऊपर उठाएं। आपका आशीर्वाद उन्हें घेरे रहे। उनकी जो भी कमजोरी है उसे ठीक करना किसी भी बीमारी को ठीक करता है। प्रिय प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें पूरी तरह से चंगा करो और अपने नाम की महिमा करो। मैं आपको सभी प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना का यीशु के नाम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13:5, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हाँ प्रियो, मत भूलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:18। मैं मर चुका हूँ, अब देखो मैं हमेशा के लिए रहता हूँ। मौत और नरक की चाबी मेरे पास है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जीवित परमेश्वर जो हमें हर पल बचाता और बचाता है, वह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी कठिनाइयों को बदलेगा और आपके आंसू बहाएगा। वह एक जीवित ईश्वर है, इसलिए वह आपसे किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। बेशक वह आपकी समस्या को बदल सकता है और आपके आंसू पोंछ सकता है। चिंता न करें, बस उसे देखें, उसे आंसुओं से बुलाओ। यीशु निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को बदल देगा। यदि आपके बच्चे अनपढ़ हैं, तो ये उन्हें बुद्धिमान बना देगा। क्या आपके परिवार में कोई समस्या है? कोई दुकान नहीं? क्या आपका करियर अच्छा नहीं है? क्या आप चिंतित हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है? थोड़ी देर के लिए प्रभु के सामने घुटने टेकें, प्रार्थना करना। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। तुम खुश हो सकते हो। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, धन्यवाद। हे प्रभु, वही करें जो आपके लोग चाहते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करें। उनके जीवन में अच्छा, चमत्कार और चमत्कार करें और केवल अपने नाम की महिमा करें। दया और भलाई उनकी रक्षा करेगी। उनकी बाधाओं को उनसे पूरी तरह हटा दें। हे यहोवा, उन्हें दृढ़ कर और उन्हें शांति और आनंद दे कि वे तेरे नाम से आनंद करें। उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं

आज का वादा रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 पद 4, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ प्यारे लोगों, क्या मैं पाप में पड़ जाऊंगा? क्या मैं अंत तक खड़ा रहूंगा? ये उलझने आपके दिल में बढ़ सकती हैं। तो हम चिंता न करें। बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 1, इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। यीशु हमें स्थिर कर देगा, वह आपको पाप से बचाएगा। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा, भजन संहिता अध्याय 89 पद 29-36 की पुस्तक, मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। यीशु हमें स्थिर कर देगा, वह ऐसा करने में सक्षम है। वहां आगे बाइबल कहती है यहूदा अध्याय 1 पद 24 की पुस्तक, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, इसलिए अपने दिलों में परेशान मत हो। यीशु आपकी रक्षा करने में सक्षम है। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए, उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। हे प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें उठाओ। प्रभु, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ।

0: आज का वादा भजन संहिता अध्याय 9-10 की पुस्तक भजनहार दाऊद कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे तो वे हमें कभी न त्यागेगा। हमें प्रतिदिन प्रभु की खोज करनी चाहिए, सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद देना चाहिए उनकी पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए। यदि हम प्रभु की स्तुति करते रहें, तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34:10। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो सब भलाई हमारे पास आएगी। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सभी आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा करेगा, ताकि कोई अच्छाई कम न हो और कोई आशीर्वाद कम न हो। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, निश्चित रूप से वे आपको आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये वादा सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद और उत्थान करे। आपको किसी भी आशीर्वाद को खोए बिना अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज का वादा के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय 7:23। आमीन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हाँ प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग मानव परामर्श के आदि हैं। वे प्रभु के वचनों को नहीं सुनते। वे मानवीय शब्दों और आदेशों के गुलाम हो जाते हैं। मानव प्रेम की लालसा में वे इसमें पड़ जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ उन्हें प्रसन्न करते हुए मानव के गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग कर्ज में डूब जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ लोग ऋणदाता के आदि हो जाते हैं। कभी किसी इंसान का गुलाम मत बनो। भगवान जो कहते हैं उसका पालन करें। अपनी आत्मा को मत खोना। अभी भी अन्य लोग बैंक के कर्जदारों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करके बंधन में बंधे हैं। आइए हम ऐसी गुलामी में न फंसे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। इसलिए किसी भी आदमी के गुलाम मत बनो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें। सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ परमेश्वर। और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारी कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। मरकुस की प्यारे पिता, अध्याय 13:33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वे यह समय कब आएगा। हाँ प्यारे लोगों, हम नहीं जानते कि वो किस समय आएगा, लेकिन उसके आने के उसके प्रतिज्ञा चिन्ह बहुत सटीक रूप से पूरे हो रहे हैं। तो केवल यीशु ने कहा, सावधान रहना, जागना और प्रार्थना करना। हमें क्यों उठकर प्रार्थना करनी चाहिए? यीशु कहते हैं, मैथ्यू की पुस्तक अध्याय 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हम इस दुनिया में हैं। यह हमारे लिए कई प्रलोभन हैं। हमें इन प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए और न ही डूबना चाहिए। हमें इन प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए हमें देखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बार यीशु कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 21 पद 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इस दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है और खतरनाक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। जीसस ने कहा कि इन सभी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर के लोग खतरनाक विपत्तियों में फंसें। वह चाहता है कि वे खतरनाक आपदाओं से बच जाएं। इसलिए वह हमें ध्यान रखने, देखने और प्रार्थना करने के लिए कहता है। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। अपने हर बच्चे को दिलासा दो जो ये वादा सुनते हैं। शांति दो और उन सभी को खुश करो। उनके बच्चों को बेहतर पढ़ने में मदद करें। पापा, अभी कोरोना का समय है। जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब आते हैं, उनकी रक्षा करें और उन्हें अच्छी बुद्धि और स्मृति दें। बारिश हो रही है। बारिश से कितने लोग प्रभावित हुए? पापा, हम प्रार्थना करते हैं कि वे यहाँ सो पहुँचे। इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित होने से बचने में मदद करें। प्रिय भगवान, उनके काम में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें हैं। उन्हें चिंता है कि कार्यस्थल पर हर कोई मेरे बारे में घिनौनी बातें कर रहा है। संकटमोचनों से मिलें, उन्हें कार्यस्थल में अच्छी शांति दें। उनकी कृपा प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। अपनी आंखों में दया पाने में मदद करें। अच्छी शांति, खुशी और स्वास्थ्य दें। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम प्रेम के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता अध्याय 84 पद 12 की पुस्तक। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धैर्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्यारे लोगों, धैर्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम किस पर निर्भर हैं? क्या हमने आत्मनिर्भरता पर भरोसा किया है? क्या हम दोस्तों पर भरोसा करते हैं? क्या हम पैसे और प्रसिद्धि पर भरोसा करते हैं? इसके बारे में सोचो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप धैर्य होंगे। कोई कमी नहीं है। कैसी भी समस्या हो, प्रभु हमें नहीं छोड़ते। यहोवा तुम्हारे साथ है और तुम्हें सब बातों में विजय दिलाएगा। उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। हाँ प्यारे लोगों, चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 62 पद 8। है लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। अच्छाई, बुराई और कठिनाई आने पर हमें यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से आपके आंसू पोंछता है। अच्छा और बुरा आने पर कृतज्ञता पूर्वक उसकी स्तुति करें। हमें वैसे भी उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ प्यारे लोगों, तब यीशु मसीह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। वह आपको मुक्त कर सकता है और आपको बचा सकता है। क्या आप हमेशा उस पर भरोसा करते हैं? हाँ प्यारे लोगों, हर मिनट उस पर भरोसा करना चाहिए। जब आप इन हिंसक रोगों से पीड़ित होंगे तो वे निश्चित रूप से आपके आंसू पोंछेंगे। वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। वह आपकी बीमारी का इलाज करेगा। क्रेडिट मुद्दे को बदलता है। वह आपको शांति और खुशी देगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता की सराहना करते हैं। धन्यवाद यीशु। अपने बच्चों को आप पर पूरा विश्वास करने में मदद करें। उन्हें आप पर भरोसा करने का अनुग्रह दें। हर समय, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में और विपत्ति में आप पर भरोसा करने में उनकी मदद करें। हर जीवन में उनका आश्रय, साथी और गढ़ बनो। हम कमजोर बहनों और भाइयों को ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भगवान, आप ही उनकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
0: अध्याय 27 पद 10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। भले ही ये दुनिया हमें छोड़ दे, परमेश्वर हमें अपने साथ रखेगा। हमारे पिता ने मुझसे कभी बात नहीं की, हमारी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की। कितने लोग परवाह करते हैं कि हमारी माँ ने मुझे नोटिस नहीं किया, और जहाँ पिताजी ने मुझे नोटिस नहीं किया। प्रभु को थामे रहो कि तुम अकेले ही काफी हो, वह हमें क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास माँ और पिताजी भी नहीं है, परमेश्वर ने मेरा इलाज किया। माँ और पिताजी को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। क्या आपको आपके बच्चों ने छोड़ दिया है? क्या आपको आपके माता पिता ने त्याग दिया है? क्या सभी ने आपको छोड़ दिया है? परेशान मत होइए, प्रभु हमारे साथ होंगे। परेशान मत होइए, वह आकाशों और पृथ्वी का रचयिता है। हाँ प्यारे लोगों, चिंता मत करो, आंसू पोछो, चिंता मत करो, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे पास कोई माँ नहीं है, और कोई पिता नहीं है, और कोई आंखों की दृष्टि नहीं है, तो अभी परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। वह आपकी भी अगुवाई करेगा, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। परेशान मत होइए। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय पिता, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु की जय हो। मेरे बच्चों ने छोड़ दिया है, हमसे बात नहीं कर रहे। क्या आप उन लोगों को आशीर्वाद दें जो चिंतित हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है? आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे। आप सभी को अपना ख्याल रखना है। अविवाहित संतानों का विवाह अवश्य करना चाहिए। कर्ज की समस्या को बदलने की जरूरत है। लोगों की मदद करें और महान कार्य करें। हम आपकी महिमा करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यशायाह
1: अध्याय 12 पद 2 की पुस्तक। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है।
0: हाँ प्यारे लोगों, प्रभु हमारी ताकत है। आप सोच सकते हैं कि मुझ में कोई ताकत नहीं है। क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? मैं बहुत थका हुआ और कमजोर हूँ। प्रभु हमारी ताकत है। डेविड ने कहा, हे यहोवा, तू मेरा बल है और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। हमें उससे प्यार करना चाहिए, वह हमारी ताकत है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। हमें उससे कहना चाहिए, यीशु, तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी शरण हो, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। अगर हम उनके चरणों पर टिके रहे तो वे हमारे लिए ताकत बनेंगे। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 25:4 कहता है कि क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़। क्या तुमने ध्यान दिया? मेरे पास कोई नहीं है, क्या आप सोच रहे हैं कि क्या करना है? परमेश्वर गरीबों के लिए शक्ति है। वह न केवल अमीरों को बल्कि अमीर और गरीब को भी ताकत देता है। चिंता मत करो। हाँ प्रियो, जब भी मेरे जीवन में कमजोरी होती है, प्रभु ने मुझे मेरी कमजोरी से मुक्ति दिलाई है। वह आपके जीवन में आने वाली कमजोरी से भी आपकी रक्षा करेगा। आपको उस पर पूरा भरोसा करना होगा। उस पर विश्वास करो और जियो। निश्चय ही वो आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारी ताकत हैं। उन सबों को दृढ़ करो जो पछताते हैं कि मैं इस समय बलवंत नहीं हूँ, कि मैं रोगी हूँ और खाने की शक्ति नहीं रखता। टाइफाइड और कैंसर के बारे में चिंता करने वालों के लिए चंगा करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बच जाएंगे। आपने कहा था कि ये गरीबों की ताकत है। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। 1,000,000 धन्यवाद। हम क्या करते हैं कि आपको रोने वालों की रक्षा और रखरखाव करना है। प्यारे पापा, हमें उनकी सभी कमजोरियों को बदलने और उन्हें नया जीवन देने की जरूरत है। सभी जरूरतों को पूरा करें और सभी के आंसू पोंछें और उनका हाथ पकड़कर नेतृत्व करें। हम आपको महिमा और सारी महिमा लाते हैं।
1: हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते
0: का वादा
1: हैं। प्यारे
0: हाँ, प्यारे
1: लोगों,
0: आमीन।
1: मैं आप सभी को मेरी ओर से नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सपयाह की पुस्तक अध्याय 3 पद 15। यहोवा ने 13 दंड दूर कर दिया और 13 शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। अब आप नुकसान नहीं देखेंगे। चाहे कितने ही लोग काम से बाहर हों, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, यहोवा ने कहा था कि वो 2022 में आपके बीच होगा। प्रभु को अपने बीच रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हागाई की पुस्तक अध्याय 2 पद 5। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मिस्र का क्या मतलब है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 12। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। गुलामी का क्या मतलब है? पापपूर्ण दासता को संदर्भित करता है, इसलिए हमें पाप के बंधन से बाहर आना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या हम निश्चित रूप से पाप से बाहर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। पिछले वर्ष के कई खतरों और विपत्तियों के दौरान हमारी रक्षा करने, दृढ़ करने और दृढ़ करने के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इस पूरे वर्ष सभी के साथ रहें। पीछे हटने से बचना चाहिए और सभी चिंताओं, आंसुओं, पीड़ाओं को बदलना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।

मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो, हे प्रभु मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो, और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा, वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 पद 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर क्रेडिट समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा, उन्हें वो सब कुछ दे जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दे। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है, उनके लिए काम पर समस्या बदलें और उन सभी को काम पर पदोन्नति दें। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आमीन।

चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस गीत से परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की।

मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है।

एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया।

0: परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए।
1: जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया।

स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है।

समाचार अध्याय 8 पद 32। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्यारे लोगों, हम सच्चाई कैसे जान सकते हैं? हमें प्रतिदिन शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना है। पढ़ें और प्रभु के वचन पर मनन करें। हम यीशु मसीह को तब जान सकते हैं जब हम प्रतिदिन सत्य पर मनन करते हैं। सच्चाई जान सकते हैं अगर हमारे दिलों में सच्चाई है, तो परमेश्वर भी शास्त्र के माध्यम से हमसे बात करेंगे। जब हम शास्त्र को अपने मन में लाएंगे और उसका ध्यान करेंगे, चाहे कितनी भी बीमारियां और कमजोरियां हों, ये ठीक हो जाएगा। हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर हमें किसी भी कठिनाई से मुक्ति देगा। वह हमसे पवित्र शास्त्र के द्वारा बातें करेगा। ये वे सत्य है जो यीशु ने कहा था कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें हर दिन सच्चाई जानने की जरूरत है। आपको बाइबल पढ़ने और प्रभु को जानने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम प्रतिदिन इस पद का ध्यान करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में सबसे महान कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, 1 पत्रस अध्याय 2 पद 2। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ प्यारे लोगों, नवजात शिशु कैसा दिखता है? जब भी भूख लगती है, वह दूध पीती है। इसी तरह हमें शास्त्रों के ज्ञान के लिए तरसना चाहिए। जैसे नवजात शिशु भूखा होता है, वैसे ही हमें शास्त्र के लिए तरसना चाहिए। शास्त्रों को प्रतिदिन मजे से पढ़ना चाहिए। यदि हमारा जीवन पवित्र शास्त्र से भरा हुआ है, तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हमें शास्त्र पर प्यास चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु ने हमें जो कहा है उसकी सच्चाई जानने का सौभाग्य प्रदान करें। सभी को परमेश्वर के वचन के लिए तरसने वाले लोगों में बदल दें। आप जो प्यार करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको

0: निगल जाए,
1: वह उन्हें कैसे निगल सकता है,
0: वह उन्हें प्रभु से कैसे अलग कर सकता है,
1: वह रास्ते ढूंढता फिरता है।
0: हमें शैतान के बारे में क्या करना चाहिए,
1: हमें उसे कभी कोई जगह नहीं देनी चाहिए।
0: यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था।
1: यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 20। मैं अब तुमसे अधिक बात नहीं करूंगा, इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। वह तभी आ सकता है जब उसे हमारे अंदर कोई जगह मिले। अगर शैतान के पास हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है तो वह आ नहीं सकता। हमारे लिए चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरी मानवता के रूप में उस सत्ता के बारे में जिसे अक्सर शैतान कहा जाता है, कोई भी स्वाभाविक या उचित कारण नहीं है, है कि हम उसमें कोई डर, आशंका या भय रखें। यह विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि ऐसी किसी भी सत्ता या प्रभाव को जो उस शख्सियत से जोड़ा जाता है, वह अंत एक उच्च दयालु और सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन है। हमारी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक विवेक की क्षमता हमें नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और सद्गुणों के सिद्धांतों से खुद को जोड़ने की शक्ति देती है, जिससे इस सत्ता से उत्पन्न कथित खतरे को महत्वहीन बना देती है। डर की अवधारणा जब सत्ता की ओर निर्देशित होती है, उल्टा असर कर सकती है। संभव है कि हमारा ध्यान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास से भटका दे। ऐसी चिंताओं के आगे झुकने के बजाय हमें आंतरिक शक्ति

यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति सकारात्मक कार्यों और अच्छाई के पालन में निहित है, जिससे शैतान से उत्पन्न कोई भी कथित खतरा पूरी तरह से निराधार और चिंता का वास्तविक कारण नहीं बनता। इसलिए हम आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसी निराधार चिंताओं से मुक्त होकर। फिर भी इसराइली लोग अच्छाई से घृणा करते थे। दुश्मन उनका पीछा करेगा, वे अच्छाई से नफरत करते थे, इसीलिए शैतान उनका पीछा कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हर अच्छा वरदान और हर उत्तम उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता से आता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें परिवर्तन की कोई छाया भी नहीं है। केवल जब हम अच्छाई से घृणा करते हैं, तभी शैतान हमारे पास आता है। अच्छाई कौन है? यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। यह मत्ती अध्याय 5:6 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें अच्छाई से घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हमें उनके और करीब जाना चाहिए और जीवन पाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं और क्या अच्छा है? 1 तीमुथियुस 2:1-3 मूल संदेश जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आपकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है जिसे सावधानी पूर्वक विचार और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह मुख्य बिंदु मैं विशेष रूप से आपके लाभ के लिए उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी पूरी गहराई और हमारे चर्चा के व्यापक संदर्भ में इसके महत्व को भलीभांति समझ सकें। मेरा उद्देश्य इस मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, जिससे आपको सभी आवश्यक पृष्ठभूमि और सहायक विवरण मिल सके, ताकि आप इस समय मैं जो समझा रहा हूँ उसकी मूल भावना को पूरी तरह समझ सकें। यह अत्यंत आवश्यक है विषय वस्तु पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण देने के लिए तैयार की गई है। यही वह केंद्रीय सिद्धांत है, मुख्य विचार है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मैं इस समय आपको अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ समझा रहा हूँ, ताकि इसकी गहन महत्ता और प्रासंगिकता को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी न रहे। यही प्रभु ने कहा था। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें प्रार्थना के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। चाहे सारी दुनिया हम पर जादू टोना कर दे, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। अगर यीशु मसीह हमारे भीतर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। यही संत पॉल कहते हैं, शैतान को कोई जगह मत दो। हर दिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, यीशु मेरे भीतर आकर निवास करो। यीशु मसीह सचमुच हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं। हमें उन्हें पुकारना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21:3 और मैंने स्वर्ग के आकाश से एक अत्यंत गूंजदार और शक्तिशाली आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, एक ऐसी आवाज जो निस्संदेह तेज और स्पष्ट थी, जो एक महत्वपूर्ण संदेश का ऐलान कर रही थी, जिसकी गूंज में अपार अधिकार और दिव्य उपस्थिति थी, जो ऐसे शब्दों को पहुंचा रही थी जिनका बहुत बड़ा महत्व और आध्यात्मिक भार था, जो सभी के सुनने और समझने के लिए थे। यह एक दिव्य क्षेत्र से आया हुआ ऐतिहासिक ऐलान था, एक घोषणा जो मेरी आत्मा के भीतर गहराई तक गूंज उठी और जिसने तुरंत ध्यान और विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता

जो हमें प्रेम करते हैं और स्नेहपूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपको कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोगों में बदल दीजिए। हमें अपने उपासक बना दीजिए और सभी को आपको जानने का आशीर्वाद दीजिए। आप शीघ्र ही आने वाले हैं, प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया किसी को भी पीछे न छोड़े। प्रभु सभी को अपने आगमन के लिए तैयार कर दीजिए, प्रभु यीशु। हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, कि हम बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ रहें और आपके जैसे बन जाएं, जो चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। पिता हम अंतिम क्षणों में हैं, प्रभु एक भी आत्मा गिरने न पाए। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरी भेड़े मेरी सुनती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ रखती हैं और मेरे अस्तित्व से निकलने वाली असीम बुद्धि और करुणा को पहचानती हैं। यह गहरा संबंध उन्हें अस्तित्व के रहस्यों की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे मेरी शाश्वत मार्गदर्शना और दिव्य योजना में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु यह बीमारी को ठीक करता है, यह रोग को दूर करता है। प्रभु कमजोरी को दूर करने वाला जादुई मंत्र टूट जाएगा। प्रभु शैतान के उन कार्यों का नाश हो जो कर्म के बंधनों को तोड़ते हैं। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता धन्यवाद। हमें ऐसी आंखें दो जो आपको देख सके। पिता हमें ऐसे कान दो जो आपकी आवाज सुन सके। पिता हमें यह आशीर्वाद दो कि हम आपको अपने प्रभु के रूप में सेवा कर सकें। चाहे कोई भी बीमारी हो यीशु उसे ठीक कर दो। आप हर कमजोरी को दूर कर देते हैं। जो लोग कर्ज में जूझ रहे हैं उनकी मदद करो कि वे अपना कर्ज चुका सके। आप उन लोगों की कठिनाइयों को बदल देते हैं जो पीड़ा में हैं। आप हर समस्या को पलट देते हैं। प्रभु आप हर चेहरे से हर आंसू पोंछ देते हैं। आप बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर देते हैं। आप पीड़ितों को मुक्ति देते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन परमेश्वर, जिनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम विनम्रता से आपके सामने आते हैं, आपकी असीम बुद्धि और शाश्वत कृपा की याचना करते हैं। आपकी महिमा और गौरव की कोई तुलना नहीं है और आपकी दयालु आत्मा हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। हम आपकी सर्वोच्च शक्ति और अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो इस ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर जीव को बनाए रखते हैं। हम अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, आपकी संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगा तक। हमारी वाणी आपको प्रिय लगे जब हम आपके दिव्य मार्गदर्शन और अपने प्रयासों पर आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे प्रभु कृपया ऐसे चमत्कार करें जो परिवार में झगड़ों और उलझनों को बदल दें, समस्याओं को दूर करें, अद्भुत कार्य करें, बीमारियों को ठीक करें, रोगों का उपचार करें और कमजोरियों को दूर करें। हे प्रभु आप टोनेटोटके के बंधनों को तोड़े, बुरे कर्मों की जंजीरों को तोड़े और सभी बीमारियों को ठीक करें। आपका नाम महिमा मंडित हो, प्रभु के नाम की महानता ऊंची हो। आपका नाम महिमा मंडित हो क्योंकि आप हमारी सोच और मांग से भी बढ़कर करते हैं। दिव्य कृपा भी बनी रहे, हमें मार्गदर्शन दे। पिता हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए। पिता जो बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करें, उन्हें स्मरण शक्ति दे, भला करें। पिता हर जीवन में भला करें। हर अच्छी भेंट और हर उत्तम आशीर्वाद ऊपर से ज्योतियों के पिता से उतरता है। आपने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं है। हमें आशीर्वाद दे
और ऊंचा उठाए। हम सारी स्तुति और महिमा आपको अर्पित करते हैं। हम विनम्रता से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, चिंता मत करो।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु का धर्म ग्रंथ तुमसे कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 शब्द 10, जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। मसीह में प्रिय, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु किसी न किसी प्रकार से हमें अभावों से बचाएंगे। हमें प्रभु को पूरी तरह से खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आसा नाम के एक राजा और उसकी प्रजा ने एक वाचा बांधी। वह क्या है? दो इतिहास अध्याय 15 शब्द 12-14, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाए। उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए। इसके प्रति सच्चे रहें, तब यहोवा अवश्य रक्षा करेगा। हम उन आशीर्वादों पर थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं जो प्रभु ने उन भक्तों को दिए हैं जो प्रभु को खोजते हैं। आइए पहले देखें, दाऊद प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 27 शब्द 8, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझ से कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने प्रभु की खोज की। प्रभु ने दाऊद की देखभाल की जिसने प्रभु की खोज की थी। दाऊद की इच्छा को देखो, दाऊद के अनुरोध को देखो। दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 63 शब्द 1, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद को विरोध, कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु यहोवा ने हार ना मानी। यहोवा दाऊद के संग था, उसने बिना असफल हुए बचा लिया। वह आपकी भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 17 शब्द 7-8, सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया और गया, वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहोवा ने दाऊद को ऊंचा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 18 शब्द 6, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। पूरे दिल से प्रभु की खोज करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए दूसरे पर नजर डालें। एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसलिए हमने उपवास किया और इसके विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। एज्रा और यहूदा के लोगों ने यहोवा की खोज की। उन्होंने कैसे खोज की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। उसने कैसे मदद की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 31, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। वह हमें उन लोगों से बचाएगा जो हमारे विरुद्ध उठते हैं। कोई कमी नहीं होगी, इसीलिए शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, प्रभु की तलाश करो। क्या आप धर्मप्रायण एज्रा की तरह प्रभु की खोज में स्वयं को समर्पित करेंगे? आइए तीसरे पर नजर डालें। बाइबल यहोशपात नामक राजा के बारे में कहती है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 3-4, तब यहोशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और हमें हर चीज के लिए प्रभु को खोजना चाहिए। सभी लोगों ने प्रभु की खोज की। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 13,
और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमें एक परिवार के रूप में भी प्रभु की तलाश करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। योएल अध्याय 2 शब्द 16-17। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जब सभी लोग प्रभु को परिवार के रूप में, सेवकों के रूप में, प्रभु के बच्चों के रूप में खोजेंगे, तो प्रभु हम पर दया करेंगे। बाइबल कहती है, योएल अध्याय 2 शब्द 18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, योएल अध्याय 2 शब्द 24-25-26, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जैसे ही हम एक परिवार और एक चर्च के रूप में प्रभु की तलाश करते हैं, प्रभु हमारे देश और हमारे लिए समृद्धि लाएंगे। सूखा मिटेगा, भूखमरी मिटेगी, हमारी शर्म बदल जाएगी, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। मसीह में प्रिय, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें प्रभु की तलाश करना सिखाएं। यह मत समझो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते। चाहे छोटे बच्चे हो, किशोर हो या वयस्क, सभी ईश्वर को खोजने पर ही मिल सकते हैं। वह जीवन जो प्रभु की खोज नहीं करता, वह एक खाली जीवन है। यहोशापात ने प्रभु की खोज की। जो राजा उसके विरुद्ध आए, वे पराजित हो गए। यहोशापात की जीत हुई। इसके अलावा शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 2 शब्द 25-26, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। जब आप प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तुम खुश हो जाओगे, आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। आइए चौथे पर नजर डालें। धर्मप्रायण दानियेल कहते हैं, दानियेल अध्याय 9 शब्द 3, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को खोजता था। दानियेल ने यरूशलेम शहर के लिए, जो 70 वर्षों से उजाड़ था और गुलाम यहूदी लोगों के लिए, प्रभु की तलाश शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन में कई चीजें नष्ट हो गई हैं। हमें गुलामी से बाहर न निकल पाने की चिंता है। लेकिन हमारे जैसा एक आम आदमी दानियेल ने बुढ़ापे में भी परमेश्वर की तलाश शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के दूत ने दानियेल की ओर देखा और कहा, दानियेल अध्याय 9 शब्द 23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। यरूशलेम के लिए दानियेल की प्रार्थना, जो 70 वर्षों से उजाड़ थी, व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर की ओर से उत्तर आया। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 36 शब्द 21-22-23, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा, तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक, उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कूसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कूसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है,
और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा, इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह वहां रवाना हो जाए। दानियेल की प्रार्थना का जवाब दिया गया। प्रभु ने राजा का हृदय द्रवित कर दिया। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई। सामग्री सहायता उपलब्ध है, सारी मदद मिली। इसलिए जब हम भी प्रभु को पूरी तरह से खोजेंगे तो प्रभु सभी प्रकार के लोगों को बदल देंगे। वह उनके दिलों को छू लेंगे। चीजें बदल सकती हैं। चाहे कुछ भी हो प्रभु ये करेंगे। हमें बस प्रभु की तलाश करनी है। प्रभु को कैसे खोजें? प्रभु ने कहा, यिर्मयाह अध्याय 29 शब्द 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करो और प्रभु महान कार्य करेंगे। वह कहता है, यिर्मयाह अध्याय 32 शब्द 27, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु की दृष्टि में कुछ भी कठिन नहीं है। वह हर चीज को आसान बना देता है। क्या आप प्रभु की पूरी शरण लेंगे? आमीन।

शापों को दूर करने समीप आया मसीहा, रोगों से मुक्ति देने अनंत जीवन देने सूली पे जा दे दिया, पापों को क्षमा करने शापों को दूर करने समीप पे आया मसीहा, रोगों से मुक्ति देने अनंत जीवन देने सूली

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देते हूँ। आमीन। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

को महिमा दे प्रियम ताली बजा कर उसके नाम को महिमा करे आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं भाषा मैंने पूछा नहीं, दिल

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेवी व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो, वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो, सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें।
शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, इब्रानियों अध्याय 12 शब्द 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 शब्द 1, इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 शब्द 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, 4 शब्द 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 शब्द 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3 शब्द 22, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2 शब्द 19-20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, 4 शब्द 1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो, प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1 शब्द 10, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7,
इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा देते हो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूले।

प्रियम ताली बजा कर उसके नाम प्रेम कर आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 शब्द 2-3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु से मिलने की हमारी एक शर्त है, केवल शुद्ध किए गए लोग ही उसके आगमन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र पुस्तक कहती है, यशायाह अध्याय 1 शब्द 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से पीड़ा के साथ पूछते हैं, यिर्मयाह अध्याय 13 शब्द 27, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हमें खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 शब्द 1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए पहले देखें, प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 1 शब्द 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू से हमारे सभी पाप क्षमा हो रहे हैं, धुल रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसके खून से धोना चाहिए। फिर आती है शुद्धि। शास्त्र कहता है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः

वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का खून साफ करता है, इसलिए अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। वो हमें शुद्ध क्यों करता है? सिर्फ यीशु के आगमन पर जाने के लिए नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 9:14, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। शुद्ध होने का मतलब केवल प्रभु के आगमन में भाग लेना नहीं है, प्रभु के लिए सेवा करो। इसलिए यीशु के खून से शुद्ध हो जाओ। आइए दूसरे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, मलाकी अध्याय 3:2-3, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा हमें आग से शुद्ध करेगा। अग्नि सामान्यतः शुद्ध करती है, इसलिए अग्नि मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। यीशु मसीह ने कहा, लूका अध्याय 12:49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलग जाती। हमें प्रभु से जो अग्नि मिलती है उसे मांगना और प्राप्त करना चाहिए। यह आग कहाँ से आती है? दानियेल भविष्यद्वक्ता कहते हैं, दानियेल अध्याय 7:10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति से आग की नदी निकलती है। जब प्रभु की यह अग्नि हमारे अंदर आती है तो ये हमें शुद्ध करती है। यशाया कहते हैं, यशाया अध्याय 6:6-7, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, आग ने यशाया के होठों को छुआ और वह शुद्ध हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की अग्नि हम पर आए और हमें स्पर्श करे। प्रभु की आग प्रेरितों पर आई और उनका जीवन बदल गया, इसलिए हमें भी प्रभु की अग्नि मांगनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2:1-3, जब पिंतेकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों का जीवन बदल गया। क्या हम अपने आप को आग से शुद्ध होने के लिए समर्पित कर दें? आइए तीसरे पर नजर डालें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, इफिसियों अध्याय 5:26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15:3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, इसलिए हमें तिरुवासना को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 1:21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। उत्सुकता से प्रभु का वचन ग्रहण करें। शास्त्र कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 17:10-11, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं।
केवल तभी जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं और अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। इसे अंदर रखो, इसका पालन करो और ये तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध करेगा। आइए चौथे पर नजर डालें। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु के लिए जियो, जब हम उसके लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते और उनके गवाह के रूप में नहीं जीते। इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से हैं। प्रभु को फल दो। हम प्रभु को फल कब दे सकते हैं? यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी वह फल दे सकता है। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है? प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2, शब्द 6, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु की तरह चलना प्रभु में बने रहना है। हम कैसे चलते हैं, इस पर थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार चले उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। प्रभु ये चाहते हैं। प्रेरित पत्रस लिखता है, 1 पत्रस अध्याय 2, शब्द 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उन पद चिन्हों पर चलना है। वही प्रभु में स्थिर रहता है। केवल उसमें बने रहकर ही हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी उसे शुद्ध किया जा सकता है। अगला, हम कब फल लाएंगे? शास्त्र कहता है, होशे अध्याय 9, शब्द 16, एप्रेम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। जड़ क्या है? हमारा विश्वास। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास कम ना हो और सूख न जाए। उसमें विश्वास जड़ जमा सकता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, कुलुसियों अध्याय 2, शब्द 6, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यदि हम उसमें निहित हैं तो हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फल लाएंगे तो वो हमें शुद्ध करेगा। यदि हम शुद्ध हो जाएं तो हम उसके आगमन पर स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध करें और तैयार करें। आमीन।